आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आइए आप सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। लेकर आपके साथ होंगे आशुतोष भारद्वाज। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर आपके साथ रहेंगे सत्य श्रवण शर्मा। और 8 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आपके साथ रहेंगे आशुतोष भारद्वाज। सुबह 9 बजे समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तरह गाने नए पुराने सत्य श्रवण शर्मा के साथ।

एफएम समाचार प्रसारित होंगे सुबह 10 बजे 10:05 पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का। आपके साथ रहेंगे गीतिका। 11 बजे समय रहेगा प्रोग्राम पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 111। विषय रहेगा चौल साम्राज्य। प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे राजेश कुमार। और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 12:05

मिनट पर समय रहेगा प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का। आपके साथ रहेंगी गीतिका। दिन में 1 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 1:05 पर प्रोग्राम मेरा

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभात कार्यक्रम में। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। और इसी कामना के साथ हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस बल की, उस ताकत की जो कि इंसान की जिंदगी बदल सकती है बिल्कुल, और वो ताकत है खुद पर विश्वास बिल्कुल। और अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं ना तो जीवन में हर बड़ा कदम बिल्कुल एक छोटे से विश्वास से ही शुरू होता है। और जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो गिरने के बाद फिर उठ सकता है, और अगर वो पहले ही गिरने के बाद हार मान जाए तो शायद कभी चलना ही ना सीख पाए। और हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है कि कई बार परिस्थितियाँ कठिन होती हैं, लोग आलोचना करते हैं, असफलताएँ रास्ता रोकती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से कहता है कि मैं कर सकता हूँ वही आगे बढ़ता है। और याद रखिए, सफलता की शुरुआत प्रतिभा से नहीं विश्वास से होती है। तो आज अपने अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो सक्षमता है कि वो आप उस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं, अपने आप को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बस इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है आज के दिन। फिलहाल आप हमारे साथ सुनते रहिए सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की

0: वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम सुप्रभात में। और कभी आपने गौर किया है कि हमारा मन दिन भर हमसे बातें करता है, जैसे हम आपसे लगातार करते रहते हैं। और यदि मन कहे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो शरीर भी हमारा जो होता है ना, उसी अनुसार उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको प्रतिक्रिया देता है। और यदि आपका मन कहे कि मैं कोशिश करूँगा और मैं सीखूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, तो वो ऊर्जा आपके साथ आगे बढ़ने लग जाती है और आपको बिल्कुल आगे खींचने शुरू कर देती है। और सकारात्मक सोच का मतलब समस्याओं को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि ये विश्वास रखना है कि हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। और आज बिल्कुल आप खुद से ये तीन बातें ज़रूर कीजिएगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं आज मेरे कल से बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल ये विश्वास आपको अपने अंदर रखना ही होगा। और एक बार ऐसा ही हुआ था कि एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि अगर तुम्हें किसी पहाड़ पर चढ़ना हो तो, और लोग कहें कि ये असंभव है, तो तुम क्या करोगे, है ना। ये एक सवाल हर किसी के सामने खड़ा हो जाता है कि कुछ अगर चीज़ चुनौतीपूर्ण चीज़ उनको करने को कहे और वो असंभव लगे तो क्या करें। तो एक छात्र ने बोला कि मैं कोशिश करूँगा, और वहीं दूसरे छात्र ने उनसे बोला कि मैं रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगा, और तीसरे छात्र ने कहा कि मैं पहले खुद पर विश्वास करूंगा और फिर पहाड़ पर चढ़ूंगा। और क्योंकि सबसे ऊंचा पहाड़ जो होता है ना, वो बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होता है। और पहले उस पहाड़ को हमें तोड़ना होगा, उस पर विश्वास पैदा करना होगा, तभी हम अपने मन को जीत सकते हैं। और जब दुनिया में कोई भी बड़ी चुनौती हो ना, वो बिल्कुल भी छोटी सी लगती है हमें, अगर हम अपने मन पर विश्वास कर लें तो हम हर किसी चीज़ को, हर किसी चुनौती को बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। यही विश्वास आपको अपने अंदर रखना होगा। और हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य आपको ज़रूर अपने ज़िंदगी में तय करना होता है, और छोटी छोटी सफलताओं को याद करते रहेंगे ना, तो विश्वास अपने आप और भी सुदृढ़ होता चला जाएगा। और तुलना बिल्कुल आपको नहीं करनी है किसी से, प्रगति पर ध्यान देना है कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और सकारात्मक लोगों के साथ समय आपको बिल्कुल बिताना है, उनके साथ आपको बॉन्डिंग करनी है, अपने जो आसपास का जो लोग वातावरण है उसको बहुत पॉजिटिव बनाना है, और अपनी गलतियों से सीखना है, उसको अवसर में बदलना है। और ऐसा नहीं है कि गलती की तो हम हार मान के बैठ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे ना तो दुनिया बहुत बहुत अच्छी लगेगी। क्यों, और व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है और आत्मविश्वास बिल्कुल अपने आप बढ़ता चला जाता है उसका। और बस यही कामना करते हैं कि आपका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ता चला जाए। फिलहाल आप सुन रहे हैं सुप्रभात आशुतोष के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और आज हम बात कर रहे हैं खुद पर विश्वास के जादू की, कि वो कैसे आपको बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। और बिल्कुल बहुत से लोग असफलता को अंत समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बड़ा असत्य है। बिल्कुल ये अंत नहीं है और ये शुरुआत है, क्योंकि आप कुछ नई चीज़ों को सीख कर आगे बढ़ रहे होते हैं। और बिल्कुल अगर बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन हजारों प्रयास नहीं करते तो आज हम इस रोशनी में कैसे बैठे होते हैं, बिल्कुल ये सोच के देखिए। और बिल्कुल उन्होंने कहा था कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने हजारों ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। और यही सोच आत्मविश्वास का आधार बना उनकी। और असफलता बिल्कुल आपको रोकने के लिए नहीं, आपको कुछ सिखाने के लिए आती है, और उसको सीखते सीखते आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना लेते हैं। और बहुत सारे असफल प्रयासों से आप अपने आप को एक ऐसा सक्षम व्यक्ति बना लेते हैं कि अगर आगे आने वाले वक्त में आप दूसरों को भी बहुत अच्छी सीख दे सकते हैं। ये आप अपने आप को एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। और बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखना है, और जादू किसी छड़ी में नहीं होता, जादू आपके विश्वास में होता है। और जब आपके भीतर की ताकत आप पहचान लेते हैं ना, तो असंभव कार्य भी संभव लगने लगते हैं। अपने सपनों पर भरोसा रखिए और अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए, और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा रखिए। इसी सकारात्मक संदेश के साथ बिल्कुल मैं चलता हूँ, आपसे इजाज़त लेता हूँ, लेकिन आपका दिन ऊर्जा उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर हो। और बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward

0: to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए. यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे. इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग. बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं. और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है. पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है.
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष.
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ.
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार. आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है. इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है. इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया. हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया. 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया. कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया. आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है. इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं. मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया. अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सके।

0: শত কোটি প্রণাম জানিয়ে আমার কথা শেষ করলাম, ভারত মাতা কি।
1: That was the Honorable Chief Minister of West Bengal, Sri Shubhendu Adhikari, addressing the gathering on the occasion of the International Day of Yoga. And every yoga enthusiast, and we can see that the Honorable Minister for Municipal Affairs, Srimati Agnimitra Paul of the Government of West Bengal, is also among the lakhs of yoga enthusiasts who have assembled at the iconic Red Road. And the Honorable Chief Minister of West Bengal mentioned that more than 2,57,000 registrations have taken place for today's main ceremony here at the Red Road, and more than a crore yoga enthusiasts will join, especially in the state of West Bengal, from Darjeeling to Digha and from Kuchbihar to Kagdweep. And now we can see that the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi is walking towards the dais where he will be performing the asanas and leading the nation today in performing yoga. And as we know that yoga for healthy aging is the theme of
2: Rajpal Shri R.N. Ravi ji, Urjavan Mukhyamantri Shubhendu Adhikari ji, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया

गया है वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस

tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे।

0: योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Sri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta, on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road, Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसना सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन है वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं, बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
2: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े

0: हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
1: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था है नियासुन। जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं
1: हम सब,
0: और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
2: And the Honorable Prime Minister has just arrived and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूंगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है
0: जी।
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
0: जी।
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
0: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
3: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी। और यहां पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
4: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है, मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की,

0: ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही रियली बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
0: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस
1: जी
0: जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं, जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना।
1: जी
0: जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी
1: जी
0: चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर
1: जी
0: उसका प्रेजेंस हमारे टोटालिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं।
1: जी
0: इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं। हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
2: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है, अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग-अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
2: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं,
1: जी
2: जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं,
1: जी
2: एमएससी है, एमए है और पीएचडी है।
1: जी
2: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका कैरियर आप डिसाइड कर सकते हैं,
1: जी
2: वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है।
0: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
0: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं। जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे।
1: जी
0: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को, खास करके

0: ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। yes, और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है, लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
2: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
2: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
1: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone, is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्ध चक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को। हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब यह कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
2: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूं, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
2: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नजदीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नजदीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं।

0: हैं और
1: निरीक्षण।
0: प्रेरणा दे रहे हैं और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं। मेरुदंड को एकदम सीधा करके और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
1: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows Ji. That how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहां हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
0: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहां पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशनड अर्लियर आल्सो, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन इंटरेस्ट स्पेशली अमंग द teenagers and youngsters who are present here and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और and now about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहां पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहां पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए। उत्तान मंडुकासन, प्रतिमा जी इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन, शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडूकासन, ये

0: स्पेशली लेडीज के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है.
2: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So, जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी
0: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है
1: जी.
0: तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ. कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन
0: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
1: जी. और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
2: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द आसन,
1: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
2: परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
0: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है. और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
1: जी.
0: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है. साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
1: जी. और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं. अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है. हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है. तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चले. मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं. और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन. यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं. भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है. इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
0: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे. ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है. और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है. साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है. स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स

0: ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है
1: जी।
0: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी ये आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं
1: जी। गुरु मुनीश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं। बहुत ही सुंदर
1: जी।
2: बहुत ही
1: और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन, इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
0: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
1: जी,
0: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
1: जी।
0: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं, उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन
1: जी। सेतु बंधासन, और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान सी कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्ध हल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है, आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये
1: जी,
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप

0: का, क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं। मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
1: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
0: जी
1: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं, तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
0: जी
1: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें। इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है। वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
2: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
3: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा, उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच, जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहां मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस, ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
0: जी, और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है, डॉक्टर प्रतिमा?
3: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयामी लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है, लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवा।

0: मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं
1: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
1: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है जी। और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग भी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
1: जी।
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी जी। भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
0: बाहर कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है
1: जी,
0: तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
1: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं जी।
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
0: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
1: जी,
0: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है
1: जी। और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूंगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहां जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है, और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है, और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें मैंने मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी।

0: कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है, और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ

0: कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
1: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
0: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho रहा है तो हमने नमस्कार किया है और साथ ही योग अभ्यास किया है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें जहां जहां भारतीय दूतावास हैं उनकी ओर से विशेष आयोजन होंगे, और अब क्योंकि बहुत सारे देश दुनिया के योग को अपना चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है, तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाए बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशनड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munish Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुनें 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनसपटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूं जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूं, मैं एक दृष्टा हूं। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शियसनेस हो जाते हैं,

0: जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्सियसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है। फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है। फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास। इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरे पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है। इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें। इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग टेररिज्म, मंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है। और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है। जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है। yes. हमारे थ्रू बह रही है। yes. और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: यस, एंड एज गुरु मुनेश सिन्हा जी मेंशनड एंड एज यू आल्सो मेंशनड नीलम जी, दैट द टुडे वी सॉ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लीड द नेशन इन परफॉर्मिंग योगासना एट द रेड रोड Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं इन दिनों। माननीय प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया। योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं। हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है। सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा। और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप, वहां पर सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ, और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। 8 बजने को हैं, अब कुछ पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

एब्सोल्युटली एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आशुतोष आपके साथ जुड़ चुका है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इतने ठंडे ठंडे मौसम में, कूल कूल मौसम में योगा करना कितना अच्छा लगता है ना, और अपनी सेहत का ख्याल रखना आपको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपके साथ हमेशा बनी रहती है और इसके साथ आप बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं ना तो सभी चीजें बहुत अच्छे से गुजरती हैं। फिलहाल आज के टेम्परेचर की बात करें तो अभी मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस, और फिलहाल अभी 32 के आसपास फील लाइक है आपको, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। और बादल बने हुए हैं ना, इतना मजेदार मौसम बना हुआ है, इसको एंजॉय कीजिए और बस सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6, हमारे साथ बने रहिएगा। और यहां पर एक से बढ़कर एक गीत हम आपके लिए चुनकर लेकर आते हैं, तो बस बने रहना हमारे साथ और गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर सुनते रहना है और अपनी मॉर्निंग को और भी हैपनिंग बनाते जाना है, और भी अच्छा बनाते जाना है, क्योंकि यहाँ पे संगीत का जो जादू है ना, लगातार आपके लिए ऐसे ही हम बिखेरते चले जाते हैं हवाओं में, इतनी अच्छी खुशबू हम बिखेर रहे हैं संगीत के माध्यम से। आपका साथ हमें चाहिए, फिलहाल बने रहिए हमारे साथ गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में।

और इतने औसम मौसम में आपका साथ मिल जाए तो बिल्कुल प्यार तो आपसे हो ही जाएगा। फिलहाल आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। वक्त हो चुका है 8:12 और 53 सेकंड्स। अपनी घड़ियां मिला लीजिए। वैसे संडे का दिन है तो संडे को आराम आप कर रहे होंगे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब जल्दी उठकर अगर योगासन करते हैं ना तो आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत फायदेमंद होती है ये चीज़। और बिल्कुल आज एक और चीज़ आप करते होंगे खासतौर पर, क्योंकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और ऑनलाइन होने से बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, बहुत आपका जीवन सुलभ हो चुका है। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो उससे जुड़ी एक बात आपको हम बताना ज़रूर चाहेंगे। UPI पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग का आप सहारा लेते हैं तो इस न्यूज़ को आपको ज़रूर ज़रूर सुनना चाहिए। और साइबर ठगी जो हो रही है ना उसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और उस बीच दिल्ली पुलिस ने भी एक पहल की है, उस पहल के तहत पीड़ितों के लिए एक राहत की खबर है ये वाली अगर हम बात करें तो। और अब साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को अपनी रकम वापस पाने के लिए कोर्ट के लंबे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C के मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल के जरिए पीड़ितों की फ्रीज की गई रकम सीधे वापस दिलाने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। और इस नई व्यवस्था के तहत अगर साइबर ठगी के बाद आपकी राशि समय रहते बैंकिंग सिस्टम के जरिए होल्ड या फ्रीज कर दी जाती है तो जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद ये रकम आपको वापस मिल सकती है। बहुत अच्छी खबर आपके लिए है। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक हाल ही में कई साइबर फ्रॉड मामलों में लाखों रुपए पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं और इसके लिए पुलिस स्टेशन में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है आपको। और बिल्कुल आपको याद रखना है कि यदि किसी साइबर ठगी का आप शिकार हो तो सबसे पहले राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आपको तुरंत कॉल करना है और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करानी है। और जितनी जल्दी हो सके रकम को फ्रीज कराने और वापस पाने की संभावना उतनी ही आपकी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल आपको सावधान रहना है क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा होती है। और OTP पिन और बैंकिंग जानकारी किसी के साथ भी आपको साझा नहीं करनी है। बिल्कुल ये आपको सबसे पहले आपको ये मानना है अपनी लाइफ में कि ये जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपको अपने पास रखनी है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। और क्या शेयर क्या करना है, शेयर इस मौसम को करना है अपने साथ और इसको खूब एंजॉय करना है। कहीं निकल पड़िए सैर पर, इतना अच्छा मौसम चल रहा है, कहीं घूमने निकल पड़िए और हमारा साथ लगातार आपके साथ बना रहेगा, संगीत में माहौल बना रहेगा, इसको एंजॉय करते रहिए। गुड मॉर्निंग।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
7: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
7: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एग्जैक्टली और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप भी सुकून में होंगे. लेकिन जून का महीना है ना, अपने पूरे शवा पर और दिल्ली एनसीआर में लोग मतलब एक बार फिर से कभी गर्मी और कभी उमस ऐसी मौसम का उनको सामना करना पड़ रहा है. लेकिन मौसम विभाग ने ताज़ा भविष्यवाणी की है और उससे कुछ राहत की उम्मीद हम कर सकते हैं. और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार दिल्ली में फिलहाल गर्मी का असर बना हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में मौसम करवट ले सकता है और बिल्कुल इसके अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है. और राजधानी और आसपास के इलाकों में बादल छाने, तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है. और मौसम वैज्ञानिकों जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बारिश और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन तापमान में बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल तो नहीं कर सकते हैं. लेकिन आप भी पूरी तैयारी के साथ निकलेगा, छाता भी आपको साथ रखेंगे और पानी की बोतल भी, क्योंकि इन दोनों की जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है. और हम

आपके साथ लगातार हमेशा बने रहते हैं। और दिल्ली एनसीआर में कुछ जो दिन है पिछले हमारे निकले हैं उनमें भी बार बार मौसम में हमने देखा है कि बहुत चेंजेस हुए हैं, और कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं तेज़ हवाओं से लोग बिल्कुल राहत की सांस ले रहे हैं। और बिल्कुल IMD ने भी संकेत दिए कि उत्तर भारत में कई हिस्सों में मौसम अस्थिर बना रह सकता है और बीच बीच में आंधी बारिश का दौर भी चल सकता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मौसम का ताज़ा अपडेट लेकर ज़रूर निकलें, और अपनी तैयारी के साथ निकलें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और पर्याप्त पानी अपने साथ रखें। बिल्कुल एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मौसम चाहे जितना बदले, आपका आपकी जो सतर्कता है ना वो हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, और उसको फिलहाल आप हमेशा अपने साथ रखिए, और फिलहाल जो मौसम है ना उसको एंजॉय आपको करना है, और इतना अच्छा मौसम फिलहाल बना हुआ है इसको एंजॉय करिए, हमारे साथ संडे को इतने अच्छे से स्पेंड कीजिए। फिलहाल हम तो हैं आपके साथ, इस धुन के साथ आपको फिर से जुड़ रहे हैं, और एक और अमेजिंग गाना निकल रहा है खास आपके लिए रेनबो के स्टूडियो से। आपके साथ मैं हूं आशुतोष, और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। फिलहाल वक्त हो चुका है 8:31 और 55 सेकेंड्स।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और फिलहाल दिल्ली जो है दिल वालों की नगरी है, और बिल्कुल ऐसा हर कोई जानता है। और लेकिन कभी कभी हमारा जो शहर है ना, वो रफ्तार से ज़्यादा अपने ट्रैफिक जाम के लिए चर्चा में आ जाता है। और अगर आप रोज़ ऑफिस, कॉलेज या फिर किसी ज़रूरी काम के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं ना किसी काम की वजह से, और बिल्कुल, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों की पहचान की है, जहाँ रोजाना हजारों वाहन ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझते हैं। और इन प्रमुख जो जाम पॉइंट्स हैं, इसमें है अंधेरिया मोड़, यूसुफ सराय, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, सावित्री फ्लाईओवर, सराय कालेखां, एमबी रोड, कालिंदी कुंज पुल, प्रहलादपुर, साकेत मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र, और बिल्कुल और भी कई व्यस्त चौराहे हैं जो यहाँ आपको ट्रैफिक जाम से दो चार होना पड़ता होगा। और यहाँ निर्माण कार्य, बढ़ती वाहनों की संख्या और बिल्कुल भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर ट्रैफिक जाम बिल्कुल आपको मिलता है और ट्रैफिक धीमा पड़ जाता है उससे। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन समस्याओं से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है, और कहीं सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, तो कहीं सड़क डायवर्जन में बदलाव के इसकी योजना भी काम चल रहा है। और पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग के बाद अब एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तैयारी की जा रही है, जबकि कालिंदी कुंज और छतरपुर जैसे इलाकों में भी ट्रैफिक सुधार परियोजना की शुरुआत हो चुकी है। तो अगर आपका रास्ता इन इलाकों से होकर गुजरता है तो घर से थोड़ा सा पहले निकले, नेविगेशन ऐप्स के मदद लें और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर लगातार नजर रखें। और ट्रैफिक पुलिस समय समय पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक अपडेट्स भी जारी रखती है, और अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक अपडेट है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070। बिल्कुल सफर वो बिल्कुल वही अच्छा होता है जिसकी तैयारी हम समय रहते कर लेते हैं, और सुरक्षित चलिए, नियमों का पालन आपको लगातार करना है, और दिल्ली को जाम मुक्त बनाने का अपना आपको जो योगदान है ना वो बिल्कुल लगातार बनाए रखना है, क्योंकि आपकी ही सहयोग से ये सब जो है ना, हमारा जो सिटी है ना वो और भी क्लीन हो जाती है, और भी अच्छी हो जाती है। और साफ़ सफाई का आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारी एक क्या बोलते हैं उसको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको हमें अच्छे से निभाना है, क्योंकि वो हम अच्छे से निभाएंगे तो सिटी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी इस मौसम की तरह। फिलहाल आप सुन रहे हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

0: environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
0: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
3: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात.

बिल्कुल, और ये तो अभी आगाज ही हुआ है क्योंकि अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी बाकी है। हमारे और भी दोस्त आ रहे हैं, बहुत सारी बातें करने आपसे, और फिलहाल बस अभी मेरा चलने का वक्त है। लेकिन चलने से पहले बिल्कुल आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है कि तनाव से राहत का बिल्कुल से एक सरल मंत्र होता है, वो है योग। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने कभी तनाव, चिंता या मानसिक दबाव महसूस ना किया, और काम का दबाव और समय की कमी, मोबाइल और सोशल मीडिया पर लगातार जो हमारी मौजूदगी है ना, वो इसकी सबसे बड़ी वजह है, और मानसिक शांति जो है हमारी प्रभावित होती है इससे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना सिर्फ 20 मिनट योग आपकी मानसिक सेहत का मतलब एक बड़ा बदलाव ला सकता है उसके अंदर। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बताते हैं कि नियमित योगाभ्यास न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, बल्कि तनाव को कम करने में और मन को शांत रखने में और नींद की गुणवत्ता को भी सुधारने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये शरीर, स्वास्थ्य और मन तीनों पर एक साथ काम करता है। और विशेषज्ञों के अनुसार जब हम योगासन, प्राणायाम या ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं ना, तो शरीर में तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो कम होने लगते हैं और मन शांत हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है हमारा, और जो हम मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। और तनाव कम करने के लिए कुछ खास योगासन भी बेहद प्रभावी माने जाते हैं, जैसे कि बालासन, वज्रासन, सुखासन या फिर शवासन। और इसमें इन सभी में गहरी सांस लेने की तकनीकें और यानी प्राणायाम मन को तुरंत राहत देने में मदद करता है। और बिल्कुल योग सिर्फ व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की कला है, और ये हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है और नकारात्मक विचारों को दूर करने में हमारी मदद करता है और हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है उसको मजबूत करता है। तो क्यों ना हम दिन में केवल अपने लिए 20 मिनट निकालें और बिल्कुल एक शांत कोने में बैठें और गहरी सांसें लें और थोड़ा सा योग, और शायद यही आपके जो आप डिस्टर्ब है ना लाइफ के अंदर, उसको एक नई दिशा मिल जाए और आप बिल्कुल फोकस होकर एक संतुलित जीवन की शुरुआत कर सके। बिल्कुल, स्वस्थ शरीर की कुंजी है व्यायाम और स्वस्थ मन की कुंजी है योग। बिल्कुल, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं इस योग दिवस की। फिलहाल बस मैं चलता हूं, लेकिन हमारे जो लिसनर्स हैं ना, उनके मैसेज भी हमारे पास आ चुके हैं, उनको भी हम शामिल करें। हितेंद्र दास इस वक्त असम से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त, और पंकज अमरावती महाराष्ट्र से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, और साथ ही साथ अजय झारखंड से।

शो को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और डॉली भी इस वक्त दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं और हैप्पी मॉर्निंग भेज रहे हैं, और साथ ही साथ फारूक अली खान भी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब थोड़ी देर में सत्य आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर। फिलहाल आशुतोष लेता है आपसे अनुमति। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्वागत है आप सभी सुनने वालों का आकाशवाणी रेनबो पर, जो पहुंचता है दिल से दिल तक। और दिल से दिल तक के सफर पर आपके साथ मैं हूं आपका हम सफर दोस्त सत्य। और प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने। तो भाई, हर मूड हर टेस्ट के गाने आपके दिल तक, आपके दिल के भीतर तक जरूर उतरेंगे इस प्रोग्राम में। बने रहिएगा सत्य के साथ। प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। नॉन स्टॉप म्यूजिक और उसमें फिर रेट्रो का फ्लेवरफुल तड़का।

जी हाँ, तेरे संग लागी रे प्रीत रे, और प्रीत जब तक ना हो ना तब तक बात बनती नहीं है दोस्त। दिल के तराने, गाने नए पुराने इस वक्त आप सुन रहे हैं और आपके साथ हूं मैं सत्य। भाई मौसम का हाल सब जानना चाहते हैं और आप में से सबको पता भी है, लेकिन सबको इंतजार है मॉनसून का। लेकिन मॉनसून दिल्ली एनसीआर में थोड़ा देर से आएगा, और लेकिन मौसम सुहाना बने रहने की संभावना है, लेकिन इसके उलट कल अच्छी खासी गर्मी थी। फिलहाल आपको बता देता हूं कि आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या हो सकता है। तो आज का न्यूनतम तापमान लगभग 28.7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान लगभग 40.2 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, और सूर्यास्त का समय आज 7:22। इसके अलावा शाम के वक्त हल्की आंधी और बारिश की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगले 7 दिन जब तक मानसून की एंट्री नहीं होती दिल्ली एनसीआर में, तब तक जो है मौसम सुहाना बने रहने की संभावना है, लेकिन जो है तापमान ऊपर नीचे अपना खेल दिखा रहा है। आज और कल हल्की आंधी बारिश होने की संभावना, जैसा कि मैंने आपसे कहा कल धूप खिली रही, लेकिन आज उम्मीद है कि आप फिर से संडे मना पाएं, अपना बाहर निकले, मिले दोस्तों से, घूमे फिरे, इसकी पूरी उम्मीद कर रहे हैं हम। फिलहाल जो है 10 दिन बाद दिल्ली में तापमान फिर से एक बार बढ़ा 1-2 दिन के लिए, लेकिन आगे संभावना है कि फिर से सामान्य हो सकता है। आप मौसम का मजा लेने के लिए खुद का ख्याल रखिए, तभी आप मौसम का मजा ले पाएंगे। फिलहाल बने रहिए सत्य के साथ। वक्त है रेट्रो तड़के का, और रेट्रो तड़के में जो गीत आपके लिए मैंने चुना है, साथ साथ गुनगुनाइएगा, मजा आएगा आपको।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

एक बार फिर से वक्त है रेट्रो तड़के का और उसके बाद आपको देता हूं ट्रैफिक अपडेट। तो भाई बने रहिए, दिल के तराने, गाने नए पुराने, हर मूड हर टेस्ट के गाने। इस वक्त आप सुन रहे हैं सत्य के साथ।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद

0: फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: आकाशवाणी रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी सुनने वालों का, और आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और भाई, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको बताऊंगा ट्रैफिक का क्या हाल है, तो ट्रैफिक अपडेट आपको दे देता हूं। और ट्रैफिक अपडेट जो है, खास ये है इसमें कि आप अगर महाराजा अग्रसेन मार्ग से सर छोटू राम मार्ग की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर वहां पर ट्रैफिक सामान्य से धीमा है। मधुबन चौक पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। भगवान महावीर मार्ग से लाला जगत नारायण मार्ग की ओर अगर आप जा रहे हैं तो भगवान महावीर मार्ग पर भी जाम की स्थिति बनी हुई है। और साथ ही आपको बता दें, आज जो है नीट का री एग्जाम भी है, तो री एग्जाम के मौके पर स्टूडेंट्स के लिए DTC बसेस में फ्री सफर की जो है सुविधा है। नीट अभ्यर्थियों को इस सुविधा के लिए केवल बस में अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा और आप सफर कर सकते हैं मुफ्त। तो आपके लिए तैयारियां पूरी हैं। तो भाई, इस तरह की और भी अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे जिस तरह की अपडेट हमारे पास आती हैं। फिलहाल एक और खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, दिल के तराने, गाने नए पुराने, मटर गश्ती बनी रहनी चाहिए जिंदगी में।

0: And now it is time for a short break. Stay tuned to Akashwani FM Rainbow.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
7: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
8: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
9: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
8: म्यूजिक मस्ती।
10: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
11: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में हमारे साथ साझा की है बहुत ही रोचक जानकारी, और ऐसी जानकारी जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, और हमारे युवा साथी बहुत रुचि लेकर इस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए, तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार स्वरूप दी गईं, वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी। ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं, और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें, इनका क्या रेलिवेंस है, इनकी क्या समसामयिकता है, ये हम समझे

0: और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी हैं, चोल साम्राज्य, हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझें। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितनी रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने 2 विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
0: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौट कर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
3: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
0: जी।
3: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे, या जो है राजस्व से संबंधित होते थे, या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि

0: हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
1: जी।
0: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है वो स्टैंप लगा हुआ है और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई हैं और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
1: जी।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे उन्होंने अनुदान दिया था, एक मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मोनेस्ट्री बनाई गई थी तो वहां पर एक गांव था अनई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मोनेस्ट्री को दिया गया था और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मोनेस्ट्री थी उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो पहला पोर्शन है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है जिसको अपना वो इष्ट देवता मानता है
1: जी।
0: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं
1: जी।
0: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनियोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की उसको यहाँ पे बयां किया गया है
1: जी।
0: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की उनको मेंशन किया गया है
1: जी।
0: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है तमिल में, जो अनुदान दिया गया है इस विहार को उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है कि उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है और उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं
1: जी। तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें जी, बहुत ही रोचक ये जानकारी है। और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
2: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती हैं बिटवीन द लाइंस
1: जी,
2: वो समाज

0: के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं।
1: जी,
0: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
1: जी
0: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है। तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
1: जी,
0: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं। इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो ये करीब 1000 साल का इनका शासन है। लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजयालू जो प्रथम शासक थे इनके
1: जी,
0: और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा। ऐसा बहुत कम है, मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 150-200 साल का था
1: जी।
0: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
1: जी,
0: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है। पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
1: जी,
0: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है, सबका साथ सबका विकास
1: जी,
0: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैट्रनेज दे रहे थे
1: जी,
0: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
1: जी।
0: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है। उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं, जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है। अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में। लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पर चोल वंश के काल में शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
1: जी।
0: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
1: जी।
0: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है, जो उस समय के और हमारे समाज की विशेषता रही है, कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
1: जी,
0: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था। राजा कोई दिक्कत आए तो वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
1: जी।
0: ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती है
1: जी। तो हमें पता चला कि सर्वधर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं ये भावना उस समय भी थी, और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है जी। ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
0: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत हैं जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा ये सुनवा दें
1: जी।

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है। नॉर्थ में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सर्वाइव कर गए हैं। उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था, एक्चुअली वो यूरोपियन सामंतवाद की तरह नहीं था। यहाँ पर जोर जबरदस्ती और हिंसा मुख्य माध्यम नहीं था समाज में व्यवस्था बनाने।

0: का। इसीलिए हम पाते हैं कि यूरोप वगैरह में, यहाँ तक कि चीन में कृषक विद्रोहों की बड़ी परंपरा थी
1: जी,
0: यहाँ पर नहीं हुआ ऐसा। एक बड़ी रोचक बात यह है कि बड़े विद्रोह कहीं नहीं हुए
1: जी,
0: हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए शायद जो आर्मी भी थी, जैसे चोल वंश की आर्मी करीब 1,00,000 स्टैंडिंग आर्मी थी और करीब 1,00,000 उनके लेवीज यानी कि वो जो नायक वहां के जो सामंत होते नायक बोलते थे उनसे मंगवा सकते थे
1: जी।
0: ये इसकी तुलना करें जो बाद की सेना है, जैसे मुगल सेना थी करीब 6,00,000-8,00,000 की सेना थी, उसका लैंड रेवेन्यू से ही खर्चा चलता था
1: जी।
0: तो लैंड रेवेन्यू उस समय कहीं ज्यादा था। जो चोल वंश में हम देखते हैं ज्यादातर 1/4 से 1/6 तक कहा जाता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कि कितना लैंड रेवेन्यू जाएगा सरकार को। अक्सर होता है कि जितना केंद्र लेता है उतना ही करीब लोकल जमींदार वगैरह भी ले लेते हैं
1: जी।
0: तो उसको आप मान लीजिए बहुत से बहुत 40-50% किसान को देना पड़ता था, जबकि हिस्टोरियन नॉर्थ के बारे में बताते हैं 70-80% किसान से ले लिया जाता था रेवेन्यू। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी चोल वंश के समय में कि हिंसा कम करके ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में एक आइडियोलॉजी को, और इसी के साथ भक्ति आंदोलन भी आ गया था
1: जी।
0: अलवर और नयनार इस समय दक्षिण के अंदर बहुत सफल एक वैष्णव और शैव भक्ति आंदोलन मना रहे थे, तो उससे कोई बड़े विद्रोह का कहीं उदाहरण नहीं है
1: जी।
0: आपने महिलाओं के लिए पूछा था, महिलाओं में भी हम देखते हैं ये तो था कि सुपीरियर मेल को माना जाता है, रिचुअल स्टेटस उसका ज्यादा है, लेकिन पर्दा नहीं था। और हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इन इंस्क्रिप्शंस में कि कई जगह महिला गांव की प्रधान होती थी। इसके कुछ एग्जांपल्स मिले हैं
1: जी।
0: महिलाएं सेंट्स थी, वाद विवाद में भाग लेती थी
1: जी।
0: तो शिक्षा भी उनको इसका मतलब मिलती थी पूरी। और जो बाद में पर्दा वगैरह नॉर्थ में आ गया वो यहाँ नहीं था, ये एक बहुत अच्छी एक बात नजर आती है।
1: तो कुल मिलाकर समाज के जो सभी तबके हैं उनके कल्याण के लिए साम्राज्य में कार्य किया जाता था जी, समरसता ज्यादा थी। मनीषा जी आपसे जानना चाहूंगी, हमारे पास इस तरह के तथ्य प्राप्त होते हैं कि जो चोल साम्राज्य के पास अपने समय के सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और उस समय भी दक्षिण पूर्व एशिया तक बिजनेस होता था, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी कि थोड़ा विस्तार से आप हमें बताएं।
2: चोल जो साम्राज्य था उसके पास बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी और उस नेवी के बलबूते पर हम देखते हैं कि जो राज राज चोल थे उन्होंने जो है काफी अपने क्षेत्र का विस्तार किया। श्रीलंका, मालदीव्स, इन क्षेत्रों को वो अपने जो है तहत लेकर आए। और उसके बाद जो है राजेंद्र चोल जो है हम देखते हैं कि उन्होंने जो है शैलेंद्र जो शासक थे उन पर आक्रमण किया। इनफैक्ट जो है ये कहा जाता है कि इतनी अच्छी उनकी नेवी थी चोल शासकों की कि उन्होंने जो ये बंगाल की खाड़ी है उसको एक चोलों की झील के तौर पर उसको परिवर्तित कर दिया। इतनी शक्तिशाली इनका जो है नेवी थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो राजेंद्र चोल जो है वो अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ जो है दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचे और शैलेंद्र जो वहां के शासक थे जो कि बहुत ज्यादा व्यापारिक जो संबंध थे यहाँ से तमिल जो गिल्स के साथ, यहाँ पे श्रेणियां जो यहाँ पे मौजूद थी जैसे कि अय्यावोल जो श्रेणी थी, उसके अलावा यहाँ पे नाना देसी नाम की जो श्रेणी थी, मणिग्रामम नाम की जो श्रेणियां थी, ये श्रेणियां यहाँ पर मौजूद थी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर और वो अपने व्यापार में जो है लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाने शुरू किए थे, परेशान करना शुरू किया था तमिल शासकों को और तमिल जो व्यापारी हैं और उनको जो है उन्होंने परेशान करना शुरू किया, क्योंकि जो चोल साम्राज्य है उसका जो व्यापारिक संबंध है वो सीधा जो है चीन के साथ स्थापित हो रहा था, ये बात भी उनको नागवार गुजरी और इसलिए जो है वो कुछ तरीके के पाबंदियां लगा रहे थे, जैसे कि अपने जो डॉक्स हैं वहां पे पायरेट्स को जो है अपॉइंट कर दिया जाता था उनके द्वारा, जिससे समुद्री जो लुटेरे हैं कि वो उनके माल को लूटें और उनको परेशान करें। तो ये जो श्रेणियां थी बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे बड़ी बात ये जो मणिग्रामम, नाना देसी, अय्यावोल, ये जो श्रेणियां थी ये हम देखते हैं ये चोल जो सम्राट हैं शासक हैं उनको पैसा भी उधार दिया करती थी, मनी लेंड किया करती थी। तो इसलिए जो है हम देखते हैं इसकी वजह से, और उसके अलावा जो राजेंद्र चोल की जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, दिग्विजय की जो उनकी नीति थी उसके तहत उन्होंने अपनी इस नेवी, इस मजबूत नेवी के साथ जो है साउथ ईस्ट एशिया पर आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पूरा उनको उन्होंने पराजित कर दिया पर उसको एनेक्स नहीं किया, उसको अपने साम्राज्य में उन्होंने शामिल नहीं किया, उन्होंने केवल क्या किया, अपने जो व्यापारी हैं उन व्यापारियों के लिए

0: वहां से कुछ जो है बेनिफिट्स लिए, और यही नहीं किया बल्कि उन्होंने वहां पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी एस्टेब्लिश किए। राजेंद्र चोल ने जो है शैलेंद्र जो थे एक शासक उस समय के, उनकी पुत्री के साथ विवाह किया, और ये विवाह किसी पीस ट्रीटी का जो है नतीजा नहीं थी, वो सिर्फ जो है उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा वातावरण अपने व्यापारियों को देने के लिए कि एक उनका
1: संबंधों का विस्तार
0: करने के लिए उन्होंने उसको वहां पर किया। हम देखते हैं कि अगर ये नेवी अगर नहीं होती, इतनी पावरफुल नेवी नहीं होती, तो ये ऐसा करना और जो है साउथ ईस्ट एशिया तक जाकर जो है किसी को पराजित करना बड़ा मुश्किल होता। और नेवी के साथ एक चीज हम और देखेंगे कि यहाँ पर नेवी के साथ साथ ये जरूर है कि कार्टोग्राफी इनकी बहुत अच्छी होगी
1: जी।
0: मैप्स, बिना मैप्स के आप किस तरीके से किस दिशा में आपको जाना है, तो हिंदुस्तान का मैप और आपका जो दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसका मैप की जानकारी होनी बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तो कार्टोग्राफी बहुत अच्छी रही होगी यहाँ पर। और दूसरी चीज एस्ट्रोनॉमी, खगोल विद्या जो है होना वो बहुत जरूरी है अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं, समुद्री व्यापार पर जा रहे हैं। किस समय जाया जाए, तो हम देखते हैं कि ये जो है मानसून जो विंड्स होती थी उसका प्रयोग करते थे, तो मानसून विंड्स जब चलती थी उस दौरान जो है उन हवाओं के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हुए जब तब ये पूर्व की तरफ जो है जाते थे, और जब सीजन का बदलाव होता था तो इनकी रवानगी होती थी
1: जी। तो यानी वो हवाओं की दिशाएं जो है नाव को आगे आसानी से
0: जी।
1: बहुत ही रोचक बात ही आपने बताई, और हम ये भी देखते हैं कि आज भी हमारी नौसैन्य कमान जो है देश में अलग अलग स्थान पर, वहां हम राजराजा चोल की प्रतिमा देखते हैं, तो इतिहास का वो सूत्र हमारी आधुनिक नौसेना से भी जुड़ता है। हम जब देश में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम उस समय से यानी अपने इतिहास से भी ये शिक्षा लेते हैं जी। तो इसी मोड़ पर आपकी पसंद का एक गीत मनीषा जी,
0: क्योंकि हम लोग चोलों की बात कर रहे हैं, चोल शासकों की बात कर रहे हैं
1: जी,
0: तो इस संदर्भ में मुझे एक पिक्चर ध्यान आ रही है, एक मूवी जिसको मणि रत्नम साहब ने डायरेक्ट की है, और इसका नाम है पोनिन सेल्वन। चोल जो राजा थे राजराज चोल, उनके जीवन से इंस्पायर्ड है, तो उस मूवी का यदि कोई सॉन्ग अगर कोई गाना जो है अपने ऑडियंस को सुना सकें तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा
1: जी। बिल्कुल
0: जी।

0: तो इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में और इस गाने ने हमें झलक दी चोल साम्राज्य की। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं मनीषा अग्निहोत्री और देवेश विजय और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की, साथ ही चोल साम्राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात कर रहे हैं, ताम्र पट्टिकाओं की बात हो रही है। अब एक और महत्वपूर्ण जो वस्तु है उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी देवेश जी आपसे। कुछ समय पहले जब हमारे नए संसद भवन का लोकार्पण हुआ उस समय सेंगोल के बारे में जाना, तो सेंगोल भी चोल साम्राज्य से जुड़ा है, मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें कुछ बताएं।
1: ये बहुत अच्छी पहल रही हमारे गवर्नमेंट की, जिसको बहुत शुभ माना जाता है और पार्लियामेंट का भी, क्योंकि नया भवन का निर्माण हुआ है उसमें इसको स्थापित करके एक आकृष्ट भी किया गया कि इस महान जो दक्षिण भारतीय परंपरा की ओर ध्यान जाए सब लोगों का, तो ये एक बहुत ही शुभ चीज कदम उठाया गया। पर मैं यहाँ पर ना एक श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हम पट्टिकाएं या इंस्क्रिप्शंस कुछ भी देखते हैं जो इतिहास के स्रोत होते हैं
0: जी,
1: तो हमें खाली ध्यान इस पर नहीं देना चाहिए कि मेंशन क्या किया गया है, बल्कि ये भी कि एब्सेंट क्या
0: जी।
1: अब मैं एक बहुत अच्छी चीज चोल वंश की जो एब्सेंट है, सोर्सेज में मेंशन नहीं आता है, पर हम कंपेयर करके समझते कि भाई उत्तर में ऐसा हो रहा था
0: जी,
1: यहाँ पे है ही नहीं। उत्तर में जौहर हो रहे थे, उत्तर में स्लेव मार्केट्स लग रही थी, हिंसा ब्रूटल बैटल्स तो दक्षिण में भी होती थी, लेकिन किस सहजता से दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारी संस्कृति पहुंच गई, उसमें कोई ज्यादा हिंसा नहीं हुई
0: जी।
1: तो ये एक कंट्रास्ट है, जौहर जैसी चीज कभी नहीं हुई, क्योंकि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता था जीतने के बाद। ये एब्सेंट जो चीजें हैं वो भी हमें नोट करनी चाहिए।
0: तो मैं मनीषा जी यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, स्थापत्य कला की अगर हम बात करें, अगर हम कला संस्कृति की बात करें, तो वो उस समय कैसी थी चोल साम्राज्य के समय?
2: मुझे लगता है कि बहुत सकारात्मक तरीके से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल चोल वंश में किया गया
0: जी।
2: स्थापत्य कला में जो है उसका बहुत ही बखूबी उसका इस्तेमाल किया गया
0: जी।
2: मैं एक एग्जांपल लूंगी यहाँ पर, तंजौर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है
0: जी,
2: जिसका एक्चुअल नाम जो है, वास्तविक नाम जो है, राजराजेश्वर मंदिर है, और ये बाद में बृहदेश्वर मंदिर जो है मराठों के समय में इसका नाम रखा गया
0: जी,
2: जो कि बेसिकली शैवाइट मंदिर है, शिव का लिंग जो है यहाँ पे स्थापित है। तो यदि आप इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देखें, बृहदेश्वर मंदिर को, मैं अभी हाल में होकर आई और मैं बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी उस मंदिर को देखकर, क्योंकि उत्तर भारत में हमें इस तरीके का कोई भी मंदिर देखने को नहीं मिलता है उसकी तुलना का। तो उसमें सबसे रुचिकर बात जो यहाँ पे जो स्थापत्य कला की है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस मंदिर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मंदिर के अंदर ही किया गया है। इसके अंदर पूरी अगर आप दीवारें देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर की, और उस पे सब पे अभिलेख लिखा गया है
0: जी,
2: इंस्क्रिप्शंस है, और उसमें जो है अभिलेख के अंदर वहाँ पे रोज के रोज किस तरीके से कार्यभार मंदिर का चलाया जाता है
0: जी,
2: उसके बारे में सारी सूचना दी गई है, किस तरीके से प्रशासकीय कार्य होते हैं, कौन कौन एम्प्लॉयर्स हैं, म्यूजिशियंस कौन से हैं, गणिकाएं हैं तो कौन है, वो सारे डिटेल्स उसके अंदर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो है इस मंदिर के अंदर जितनी मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का बारीकी से डिटेल मिलता है, उसका आकार क्या है, क्या वेट है, उसका एक एक डिटेल जो है मूर्तियों का उसके अंदर उल्लेख उसका किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रही थी, आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो बहुत बड़े गोपुरम मिलते हैं, दो गोपुरम गेट्स जो होते हैं, बहुत ही भव्य जो है द्वार इसके बने हुए हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो भव्य द्वार बने गए हैं ये जो है इसमें मोर्टर का प्रयोग नहीं किया गया है। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो इसमें सीमेंट लाइन ये जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसको इंटरलॉकिंग जो पद्धति है उसके द्वारा इतने बड़े ऊंचे द्वार जो हैं ये खड़े किए गए हैं
0: जी।
2: इसके अलावा अगर आप मंदिर का विमान देखें, जो गर्भगृह के ऊपर जो विमान है उसको अगर देखें, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर दो नंदी जो बुल्स हैं वो बैठाई गई हैं, और उसके साथ साथ जो है कलश भी है जो कि बहुत हैवी है, और जो कि 80 टन का जो ग्रेनाइट है उसको उसके ऊपर टिका के रखा गया है। तो 80 टन का ग्रेनाइट बहुत भारी ग्रेनाइट है जिसको बैलेंस करके उसको लगाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेनाइट से

0: बना हुआ है, और ग्रेनाइट जो है वो बहुत हैवी ग्रेनाइट्स हैं, और ये ग्रेनाइट जो लाए जाते थे वो 65 किलोमीटर दूर जगह से लाए गए थे, इरूर नाम की जगह है, वहां से उसको लेके आया गया। और ये जो ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट एक ऐसी क्वालिटी के ग्रेनाइट है जो कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स की मन जो है मिट्टी के अंदर जाने के बाद, बहुत डीप में जाने के बाद जो है वो उस तरीके की जो है ग्रेनाइट बन के निकलते हैं। तो आप समझ सकती हैं क्वेरिंग में कितना मुश्किल रहा होगा, इतने भारी भारी ग्रेनाइट को निकालना, फिर उस ग्रेनाइट को 65 किलोमीटर लोड करके लाना, उसको अनलोड करना, और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल करना।
1: जी।
0: तो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई होगी तभी ये हो रहा होगा। और उसके लिए यहाँ पे इस तरीके की सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जो है कहीं ना कहीं शिक्षा दी जा रही होगी, इस तरीके के इंजीनियर्स जो है वो तैयार किए जा रहे होंगे। एक और जो बात मैं प्रौद्योगिकी के कंटेक्स्ट में जो बोलना चाहूंगी बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में, यहाँ पे 2010 में ASI ने एक मंदिर के साथ ही जो है एक होल किया था। होल करने पे उनको वहां पे सैंड मिला, और उसके बाद ही पता चला कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सैंड बॉक्स के ऊपर टिका हुआ है। सैंड बॉक्स किस लिए? क्योंकि ये सैंड बॉक्स जो है वो अर्थक्वेक को रोकने का काम रेजिस्टेंट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है ये जो सैंड बॉक्स है। तो आप सोचिए कि उस समय इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए
1: दूरदर्शिता रही होगी,
0: तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हमें उसका एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर की यदि मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शिवलिंग है पूरा बहुत बड़ा शिवलिंग है, 2 स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके अंदर वो शिवलिंग पूरा फिट कर होता है। नंदी बुल जो है वो एक ही ग्रेनाइट से बनाई गई है, वो है वहां पर। उसके अलावा आप देखेंगे जो वहां पर अंदर जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर बिल्कुल अंधेरा है वहां पे, लेकिन आपको उसमें फ्रेस्कोज मिलेंगे उनकी वॉल्स पे, पूरा जो है आपको डांसिंग गर्ल्स और उस तरीके की जो है पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती है। और ये मंदिर हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ लाइब्रेरीज होती थी, यहाँ पे जितने भी तमिल आपके जो टेम्पल्स हैं वहां पर मैन्युस्क्रिप्ट को रखा जाता था, जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको, चाहे वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको संजोया जाता था लाइब्रेरी में। और ये मंदिर इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र भी थे, यहाँ से शिक्षा जो है वो दी जाती थी, खासकर जो धर्म से संबंधित जो शिक्षा है, वेद है, पुराण है, आगम टेक्स्ट है, ये सब वो पढ़ाया जाता था। और उसके बाद जिसको फर्दर जो है कुछ अगर अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए एडवांस्ड जो है एजुकेशनल सेंटर्स होते थे, जिनको मर्चेंट सपोर्ट करते थे, रॉयल फैमिली सपोर्ट किया करती थी और मंदिर सपोर्ट किया करते थे।
1: यानी हम एक तरह से देखें तो मंदिर शिक्षा के केंद्र थे, और हमने ऐसा सुना है कि हर मंदिर के प्रांगण के आसपास चिकित्सालय भी उस समय होते थे, मंगल कार्य वहां पर होते थे, वैवाहिक कार्य होते हैं वो होते थे, तो सामाजिक कार्यों के लिए भी मंदिर के प्रांगण का
2: लोन भी
1: जी और स्कॉलरशिप और लोन भी दिया जाता था मंदिर से ही। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है चोल साम्राज्य के बारे में, और मंदिर के बारे में आपने हमें इतना कुछ बताया। यहाँ पर आपकी पसंद का एक गाना,
0: मेरी फरमाइश जो है इस समय है, ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, ये मेरा इंडिया।
1: तो आपकी पसंद का ये गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: बताना चाहूंगी टेक्निक क्या होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो बी वैक्स जो होता है उसको जो है एक तरीके का जो कपूर होता है कैम्फर, उसको तेल में उसको गूंद कर उससे एक सांचा बनाया जाता था
1: जी।
0: और उस सांचे में फिर जो है मिट्टी का लेप लगाया जाता था और उस मिट्टी का लेप लगाने के बाद उसको जो है भट्टी में जो है उसको पकाया जाता था। भट्टी में पकाने के बाद जो है वो जो वैक्स होता था वो तो पिघल के हट जाता था और जो क्ले का जो सांचा था वो निकल कर आता था। और उसके बाद जो ब्रॉन्ज की जो स्कल्पचर्स बनाए गए या मूर्तियां बनाई गई उसका जो धातु है, और ये धातु जो है वो पंच धातु होते थे जिसमें कि ब्रॉन्ज कॉपर लेड ये सारा जो है मिलाकर जो है इसको बनाया जाता था पंच धातुओं को। तो उसको फिर मेल्ट करके जो है उस सांचे के अंदर डाल दिया जाता था और जब वो सांचा उसमें सेट हो जाता था सूख जाता था तो उस सांचे को तोड़ दिया जाता था जब वो धातु जो है सेट हो जाता था। तो इस प्रकार से एक सांचा जो है वो केवल एक बार इस्तेमाल किया जाता था, उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता था। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन जो है इस टेक्निक के द्वारा जो है निर्मित हमारे पास बहुत सी ब्रॉन्ज की जो है हमारे पास मूर्तियां
1: जी है। क्या आज भी हमारे पास है मंदिरों के अतिरिक्त?
0: मंदिरों के अतिरिक्त हमारे पास म्यूजियम्स में है, म्यूजियम में बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो म्यूजियम
2: विदेशी म्यूजियम्स में भी है
1: जी।
2: नटराज बहुत सेलिब्रेटेड पीस ऑफ आर्ट माना जाता है
1: जी। इस रोचक बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आइए लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक बात कहना चाहूंगा, जो कि बड़ा सकारात्मक उपयोग चोल वंश ने किया, इरिगेशन। हमारे साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा जो समस्या रही है वो मानसून का फेलियर और उसके साथ आने वाले फेमींस में लाखों लोगों का मरना। उसके लिए चोल वंश ने खास तौर पर न केवल टैंक्स बड़े स्तर पर बनवाए जिनमें पानी इकट्ठा रखा जा सके,
1: जी,
0: डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन, कावेरी पर कैनाल्स को डाइवर्ट करने के लिए पानी को ये शुरू किया। ये चोल वंश का, क्योंकि राजा ठीक है टैक्स ले रहा है अपने शौर्य के लिए, अपने वो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या दे रहा है
1: जी?
0: ये बहुत वेलफेयर पॉलिसी क्या है, ये कंपेयर किया जाना चाहिए। ये सारे बड़े बड़े साम्राज्यों ने नहीं किया, लेकिन चोल वंश का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था
1: जी।
0: और एक और इसी तरह से हमें उनकी इंस्क्रिप्शंस और इन ताम्र पट्टिकाओं में मिलता है टैक्स रिलीफ। ड्राउट्स का मेंशन आया है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं आया। फॉरेन ट्रेवलर्स भी कई आए, चीन से भी आए, जो दक्षिण में भी आए थे, कई अरब ट्रेवलर्स आए, लेकिन किसी ने भी ऐसा मेंशन नहीं किया है जैसा शाहजहां के टाइम में करोड़ों लोग मर गए थे जब दक्कन में अकाल पड़ा। अंग्रेजों के टाइम में कितने करोड़ों लोग मर जाते थे
1: जी।
0: लेकिन चोल वंश में ऐसा नहीं हुआ। उसमें दो ये चीजें थी, एक तो इरिगेशन की टेक्नोलॉजी का यूज
1: जी, और कावेरी नदी पर बांध जो है आज भी जानते हैं उसके बारे में लोग जी,
0: वो कनाल सिस्टम अभी तक है, और टैक्स रिलीफ।
1: पोनगेरी जलाशय उनको कहा जाता था
0: जी,
1: जी, जो करते थे सिंचाई व्यवस्था
0: बहुत महत्वपूर्ण इनका योगदान था।
1: आपने बताया कि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और दूसरा मुश्किल के समय लोगों को कर से छूट दी जाती थी, और जो कार्य है वो किए जाते थे उनकी भलाई के लिए जी।
0: और एक और चीज बड़ी अच्छी थी स्थानीय स्तर पर, वो है कि जो न्याय व्यवस्था थी वो भी काफी हद तक स्वशासन का हिस्सा थी
1: जी।
0: और कहीं भी हमें उल्लेख नहीं मिलता कि फोर्स का बहुत ज्यादा, कहीं प्रिजंस नहीं थे, खाली ऑस्ट्रेसिज्म कहते हैं, ऑस्ट्रेसिज्म से
1: जी
0: व्यवस्था बरकरार रख ली जाती थी
1: जी।
0: ये बड़ा ही पॉजिटिव पहलू था
1: जी। तो हम संग्रहालयों का उल्लेख करते हैं, हमारे युवा साथी अगर इस बारे में ज्यादा जानना चाहें तो ऐसे में उनके पास क्या क्या माध्यम है?
0: देखिए, पुस्तकों के अलावा और पॉडकास्ट के अलावा और आपके प्रोग्राम के अलावा उन्हें जरूर म्यूजियम जाना चाहिए, और जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देख कर कि मोहनजोदड़ो में ये व्यवस्था थी ड्रेनेज की, या जो आप नालंदा के बीच में खड़े होकर सांझ के समय जो महसूस करेंगे, वो केवल पुस्तकों से या आर्टिकल्स को पढ़ के नहीं आ सकता। तो इन सब का जरूर विजिट करना चाहिए युवाओं को, और ग्रुप बना के जाना चाहिए। उसमें जो चर्चाएं होती हैं, जो आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है
1: जी। यानी प्रधानमंत्री जी ने तो हमेशा प्रेरित किया ही है कि पर्यटन भी सुचारू रूप से चले, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है, और पर्यटन के दौरान हम जो सीखते हैं कई बार वो हमें किताबों में नहीं मिलता, व्यावहारिक ज्ञान अलग होता है जी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने चोल साम्राज्य के बारे में जो जाना है, समझा है, उसे हम और गहन अध्ययन का हिस्सा बनाएंगे, और हम संग्रहालयों की यात्रा भी करेंगे, हम दौरा करेंगे ऐसी जगह का जहां से हमें अपने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में और जानने समझने को मिले, और हमारे पर्यटन में भी हम ऐसी जगह जरूर जाएंगे जो हमें बताती हो हमारी संस्कृति के बारे में, और हमारे जो अलग अलग साम्राज्य रहे हैं उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। तो देश काल परिस्थिति को अगर हम समझना चाहें तो ये भी हमें जानना होगा कि इतिहास हमेशा देश काल परिस्थिति के बारे में अलग अलग तरीके से बताता है, और उससे बहुत कुछ सीखकर हम भविष्य की वो डोर थाम सकते हैं जो हमें हमारी जगह पुख्ता रखने में मदद करेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत मानचित्र पर सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पूरी सभ्यता है, एक पूरी संस्कृति है, जिसने सदियों तक दूसरे देशों को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो इसी मोड़ पर मैं अपने विशेषज्ञों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश विजय जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा अग्निहोत्री जी आपका।
2: थैंक यू नीलम जी।
1: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: पोस्ट बॉक्स नंबर

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। देवी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो हमारे संग्रहालय हैं वो क्या भूमिका निभाते हैं इतिहास को भविष्य से जोड़ने में।
1: इससे पहले मैं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

0: श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: बड़ी है मात।
1: पताका चाय, गजब का स्वाद।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
6: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
5: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
6: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
5: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
8: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
7: क्या ये जांच उपलब्ध है?
9: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
10: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
9: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ।
10: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
11: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
12: अब नेक्स्ट वी

0: और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव

0: आन हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
10: Now it is time for the last track of this segment, and it is equally special. I hope you've enjoyed spending this Sunday afternoon with me and have been enjoying the music as much as I have enjoyed bringing it to you. So before we wrap things up, we have Eagles with Busy Being Fabulous.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं, बिल्कुल। और हमारा नंबर है जिस पर आप अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं, वो है 9868107070 9868107070। लेकिन आज का दिन बड़ा ही खास है, और वो खास इसलिए है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जीवन शैली में जहां लोगों के पास अपने लिए समय निकालना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा फरमाइशों को शामिल करें, लेकिन समय को देखते हुए ज्यादातर हम 7 से 8 गाने आपकी पसंद के आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन हमारे वो साथी जिनकी पसंद के गीत नहीं चले, वो क्या करें, सिर्फ मैसेज भेज दें, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ अगर ये हो कि आप अपनी कुछ बातें, कुछ राय, कुछ आपके दिल में जो चल रहा है वो भी हम तक पहुंचाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि आप अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाते हैं, और आपको क्या लगता है कि अच्छी सेहत बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की होती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा योग तो है ही। तो अपनी बातें, अपने जो मन में आप सोचते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे साथ बातें साझा कर सकते हैं। फिलहाल आज फादर्स डे भी है, तो हमारे कई साथियों ने कुछ रिक्वेस्ट, जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है, जो हम तक पहुंचा दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, आप सभी का स्वागत है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। इतने खूबसूरत दिन पर इतना खूबसूरत सा गाना, और हम सभी लोगों के मन में जो एक प्रेम है, जो एक लगाव है अपने पेरेंट्स को लेकर, खासकर पापा को लेकर, उसको हम आसानी से इस गीत में महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई गीत हैं जो हमारे दिल की आवाज़ बनते हैं, उन्हीं गीतों में से एक ही है। और बहुत सारे गीतों की आप भी फरमाइशें कर रहे हैं, तो चलिए आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपने कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं, और आपकी जो फरमाइशें हैं वो तो हम धीरे धीरे धीरे धीरे आप तक पहुँचाएंगे ही। फिलहाल पहुँचते हैं आपके मैसेज की तरफ। सबसे पहला जो मैसेज भेजा है हमें, कविता जी ने भेजा है टिहरी गढ़वाल से, उत्तराखंड से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। साथ ही हितेंद्र दास ने असम से मैसेज किया है, और उन्होंने एक मैसेज में, इस मैसेज में अपनी बात लिखकर हम तक पहुंचाई है। साथ ही साथ मैसेज हमें भेजने वाले में कुछ और भी हमारे साथी हैं, जिनमें नाम ढूंढ रहा हूं। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी। आपका मैसेज पहले आ गया, तो देखिए आप टाइप करते रहिए, फिलहाल हमने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। यूपी हकीमगंज से इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, नाम इनके हैं आसिफ अंसारी, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख बादशाह, और परमार, अमित, कमलेश भाई, गम सरसिया धारी, अच्छा

जिला अमरेली से हैं। इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, साथ ही साथ मैसेज भेजने वाले में हमारे साथ हैं तमिलनाडु से। इनका नाम है अमरदीप कुमार, कुप्पमपट्टी जलाकंडापुरम बाजार सेलम से इन्होंने लिखा है, और एक गाना सुनने की इन्होंने भी फरमाइश की है। तो इन्होंने साथ में एक चीज़ और जोड़ी है कि आज जो है, आज का दिन तो सबसे लंबा है। बिल्कुल, आज का दिन बहुत ख़ास है, और इसलिए आज के ख़ास दिन पर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। और मैसेज भेजने वाला में जैद और हुडा का भी मैसेज आया है गाज़ियाबाद से, और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। फरमाइशें कुछ और भी हमारे पास हैं, और फरमाइशों के साथ साथ आप सभी लोग योग दिवस की जो है शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और हमने आपसे कहा है कि अपने आप को सेहतमंद फिट बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं, वो सब भी आप हमारे साथ आज साझा कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। और अगला जो मैसेज है वो है कृष्ण कुमार मिश्र जी का, दिल्ली में रहते हैं, और इन्होंने भी कहा है कि एक गाना मेरी पसंद का आप सुना दीजिए। तो ठीक है जी, आपकी पसंद के गीत तो हम बिल्कुल अब आप तक पहुंचाने ही वाले हैं। और जो अगला गीत हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो है फिल्म सरगम से, और सरगम से गाना कौन सा है, ये वाला।

बिल्कुल जी, डफली वाले डफली बजा सकते हैं और हम आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे वो बुला रही है ना, उसी तरह से हम भी कह रहे हैं कि आप भी अपने मैसेज हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070, 9868107070। इस नंबर पर आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा सकते हैं। उन गीतों के साथ जुड़ी कोई आपकी बात हो तो वो भी हमें बता सकते हैं। साथ ही हमने आपसे ये भी पूछा है कि अपने आप को फिट रखने के लिए आप क्या खास करते हैं, तो आप उसके बारे में भी अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाएं। फिलहाल हम पहुंचते हैं आपके मैसेज की तरफ एक बार फिर से, और जहां पर पिछला मैसेज छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैसेज अगला है गुड्डू धाकड़ का, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से इन्होंने लिखा है, एक गाने की फरमाइश की है और लिखते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए मैं तो सुबह 5:30 बजे रोज उठता हूँ। क्या बात है, सुबह उठने की आदत बहुत ही कमाल की आदत है। आप सुबह उठकर बहुत सारे काम समय पर समेट देते हैं और फिर दिन भर आपके लिए बहुत सुकून भरा सब कुछ हो जाता है। अगला जो मैसेज है राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, और इसमें जो है इन्होंने अपनी फरमाइश तो साथ ही साथ लिखी भी है और एक गाने की फरमाइश अपनी पत्नी के लिए लिखी है इन्होंने, जिनका नाम है नंदिनी जी, और ये बात हम तक पहुंचाई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त इतने प्यारे मैसेज के लिए आपका। जर्मनी से इला और सौरभ का भी मैसेज आया है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और मैसेज भेजा है हमें कासगंज से मास्टर राधेश्याम ने, मास्टर राधेश्याम शाक्य, इन्होंने लिखा है कि करो योग रहो निरोग, अपने पिता का रिस्पेक्ट करें, और एक गाने की फरमाइश भी इन्होंने की है। अगला जो मैसेज है आपका, नाम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, जगदीश कुमार राहुल रितिका नांगलोई से, देख रहा हूँ कोई और नाम तो छूटा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, छूटा नहीं है, आपने भी एक गाने की फरमाइश की है। और हमारे जो पुराने दोस्त हैं इनका नाम है सौरभ नेजा जी, इन्होंने भी मैसेज किया है और हमेशा की तरह अपना एक वन लाइनर मैसेज भेजा है कि मेरी सॉन्ग चॉइस नहीं होती, मैं तो बस शो को एंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छा करते हैं आप, और आप मैसेज भेजते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अनीता वर्मा का दिल्ली से मैसेज आया है और एक गाने की इन्होंने भी फरमाइश की, और आज फादर्स डे पर बहुत सारे जो गीत आप सुनने की फरमाइशें कर रहे हैं लगातार हमें मिल रही हैं आपकी फरमाइशें, और हम भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशों को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अगला जो मैसेज है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का मैसेज आया है, और मैसेज करने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, उनका नाम है वरुण वार्ष ने अलीगढ़ से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। गाने की फरमाइश एक और आई है और वो है आफशा खानम से धामपुर ज़िला बिजनौर से, और इन्होंने आज के इस खास दिन पर हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स लिखकर भेजा है। और अगला जो मैसेज है ये है किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और कुशु का रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और मैसेज भेजा है हमें आकांक्षा ने मुंबई से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और लगभग उसी तरह की फरमाइश एक और आई है, इनका नाम है श्याम सुंदर गोवा से इन्होंने लिखा है, और इन्होंने आज के दिन से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प जानकारियां भी साझा की कि फादर्स डे की आधिकारिक शुरुआत सन 1910 में अमेरिका में सोनोरा स्मार्ट डोड ने की थी, जिन्होंने अपने एकल पिता द्वारा दिए गए पालन पोषण का सम्मान करने के लिए ये दिन मनाया, और 1966 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने पहली बार जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की घोषणा की। तो आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। चलिए अब फादर्स डे की बात हुई है तो आप लोगों की पसंद का ये गीत आप सभी तक।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

कुछ ऐसी ही होप, कुछ ऐसी ही पॉजिटिविटी होती है और बिल्कुल इस गाने के साथ हम सभी लोग महसूस करते हैं वो सब कुछ जो हम अपने परिवार में खासकर पापा के साथ जो यादें होती हैं उनको हम जब साझा करते हैं। कांट से मोहम्मद फुरकान ने मैसेज लिखा है कि आज मैं आपका शो सुनने में थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और इन्होंने कहा है कि एक गाना सुनवा दीजिए मेरी पसंद का गाना, तो वही था जो अभी हमने आपको सुनवाया। तो आप ही की नहीं बल्कि कई लोगों की ये पसंद थी जो आप तक पहुंची है। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं कि आज विश्व संगीत दिवस भी और सभी को संगीत सुनना अच्छा लगता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे संगीत सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। अच्छा संगीत हमें जीवन में सकारात्मक सोच का निर्माण करता है और संगीत एक मेडिसिन की तरह हमारे जीवन में होता है। बिल्कुल जी, संगीत के बारे में आपने बहुत सही बातें कही हैं। अच्छा, लिख रहे थे मैसेज तो अब उन्होंने पूरा मैसेज लिख दिया है, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी नई दिल्ली से, कि सत श्री अकाल राजेश पाजी, तुसी केवे हो जी, असी वधिया जी, तुहाडा की हाल है। आगे लिखते हैं कि हैप्पी फादर्स डे, शॉप पर कस्टमर आ गए थे। अच्छा, तभी आप पूरा मैसेज नहीं लिख पाए, तो मैसेज बीच में रह गया, कोई बात नहीं, अब फ्री होकर लिख रहा हूँ तो अच्छी बात है, आपने फ्री होकर मैसेज लिखा और हम तक पहुँचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैसेज भेजने वालों में कुछ मैसेज ऐसे भी है जिनकी फरमाइशें पूरी हुई है और उन्होंने दोबारा से मैसेज करके हमें बताया कि वाह ये तो कमाल हो गया। राहत और गज़ल का मैसेज है, इन्होंने नेहटौर बिजनौर से मैसेज लिखा है, एक गाने की फरमाइश की है। और गांव मलवाला जिला बठिंडा से बिहला सिंह फौजी, गुरनूर मान, निमरत, सतविंदर कौर, बलराज सिंह मान और बलकार सिंह मान का भी मैसेज हम तक पहुंचा है, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और कुछ और फरमाइशें हम तक पहुंची हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। जिला पन्ना मध्य प्रदेश से AK पांडे हर्ष ने भी मैसेज किया है और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। मैसेज जो आगे हम तक पहुंचे हैं वो ये हैं, भगवती नई दिल्ली से लिखती हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वॉक पर जाती हूं, थोड़ी हल्की एक्सरसाइज भी करती हूं और सुबह सुबह सब मिलकर दिल खोल कर हंस लेते हैं। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा करते हैं आप। और अपनी सेहत के लिए ये सभी चीज़ें हम सभी लोगों को करना ज़रूरी है, खुलकर हंसना बहुत ज़रूरी है और अपने लिए समय निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम अच्छे हैं तो फिर हम और लोगों का भी ध्यान रख पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर पाएंगे। अगला जो मैसेज है वो है मनमोहन राठौड़ और श्यामू राठौड़ का, साथ में रामू राठौड़ भी। अच्छा, इन्होंने रघुवीर नगर दिल्ली से मैसेज किया है, एक गाने की फरमाइश की है। जोया का मैसेज है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। साथ ही साथ कुछ और दोस्त हैं हमारे जो लिख रहे हैं, अपनी बातें हम तक पहुँचा रहे हैं। और उन दोस्त तो के अगर मैं नाम ढूंढूं तो नाम कई बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है दोस्त, तो थोड़ा सा नाम ना आप कुछ या तो बिल्कुल आगे लिख दीजिए या तो बिल्कुल पीछे लिख दीजिए, तो थोड़ा मुझे ना ढूंढने में आसानी हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपका नाम जो है प्रोग्राम का हिस्सा भी बन जाएगा। लिखा इन्होंने कि एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और सोचने की सही दिशा निर्देश अच्छा प्रदान होता है। अच्छा, बिल्कुल हिंदी में लिखा है आपने। हमारे गाने की फरमाइश पूरी हो या ना हो, मैसेज ज़रूर पढ़ लेना, समझ जाएंगे हमारी फरमाइश पूरी हो गई। धन्यवाद श्याम शंकर मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैसेज करने के लिए। और अब जबकि हम फादर्स डे मना रहे हैं तो मदर्स जो हैं वो अपनी उपस्थिति जो है वो अपने आप को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगी। मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से लिखती हैं कि मुझे तो सभी सॉन्ग्स ही अच्छे लगते हैं बट मेरी बिटिया आई हुई है, वो जिनसे वो कह रही है बट वो जाने को कह रही है, अच्छा तो ये मना कर रही है पर वो जा नहीं रही, तो एक गाना है वो आप सुनवा दीजिए तो हो सकता है कि वो रुक जाए। अच्छा, तब देखिए आपने ऐसी बात कर दी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत और इसके बाद वापस आते हैं।

0: फिल्म राजा हिंदुस्तानी से आप लोगों ने ये उदित नारायण और अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाज में ये गीत सुना, बहुत ही प्यारा सा। और इस गीत की तरह से हम भी आपसे कहेंगे कि जाना नहीं, क्योंकि एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने मैसेजेस जो आपने भेजे हैं उनको हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हमारे वो साथी जो अभी तक अपनी बात हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं, हम उनके लिए जरूर कहेंगे कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए और साथ ही कुछ और बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमने आपसे ये भी पूछा है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं, तो वो भी हमें बता सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: हे, डिड यू नो, ओवर द पास्ट 12 इयर्स अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इंडियाज डिफेंस सेक्टर हैज विटनेस्ड अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रॉम बूस्टिंग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग टू स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, इंडिया इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस विद कॉन्फिडेंस।
3: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies.

0: to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
0: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
2: Para Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और आपके अलग अलग सॉन्ग की जो फरमाइशें हैं हम उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो भी आप ही लोगों की फरमाइश का था, और आप तक पहुंचाने की हमारी जो कोशिश रही उसी को हमने आगे बढ़ाया। तो चलिए अपनी कोशिश को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मैसेज किया है हमें सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि एफएम रेनबो परिवार को पितृ दिवस और योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और

कामनाएं। और कार्यक्रम में हमारे अनुरोध पर एक गीत सुनवाइए, ये इन्होंने कहा है, तो दोस्त मैं कोशिश जरूर करूंगा। और साथ ही साथ अपनी और भी बातें जो प्यारी प्यारी लिखी हैं आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फॉर्मेट आपने बनाया है, एकदम सब कुछ क्लियर हो जाता है। आपने सबसे पहले अपना नाम लिखा, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर, सोनीपत लिखा, उसके बाद थोड़ी जगह बताई और उसके बाद अपना मैसेज लिखा, तो बहुत आसानी से हमें पढ़ने में ये सब कुछ आ गया और हमने पढ़ भी दिया। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, इनका भी मैसेज आया है। और गांव शोभापुर से बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने मैसेज लिखकर कहा है कि फिट रहने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, जो आपने शुरू में ही बता दिया था, संतुलित खान पान, पूरी नींद, व्यायाम। हमारा संदेश आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, यदि प्रोग्राम समाप्त होने से पहले आपको हमारा मैसेज मिल जाए तो हमारी पसंद का एक गाना चला दीजिएगा। जी बिल्कुल, हम कोई भी मैसेज ऐसे मिस करने का बिल्कुल हमारा प्रयास नहीं होता है, कई बार हो जाता है, हो सकता है कि आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही मैसेज भेज दिया हो, ये भी हो जाता है कई बार, या फिर इस तरह की हो, लेकिन अच्छा लगा आपने फिर से मैसेज किया और अपनी बात पूरी हम तक पहुंचाई। मैसेज किया है हमें कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, लिखते हैं कि हम तो सुबह 4:30 बजे उठकर फजर की नमाज अदा करते हैं और अपने मुल्क के लिए और सभी देशवासियों के लिए दुआ करते हैं, फिर वॉक पर निकल जाते हैं और आज पापा की बहुत याद आ रही है। तो दोस्त बहुत अच्छा करते हैं आप, और ये जो बातें लिखकर पहुंचाई हमें आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय लिखते हैं कि करो योग, रहो निरोग, सबसे बड़ी माया निरोगी काया। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने लिखकर यह हम तक पहुंचाया। अगला मैसेज है, इनका नाम तो मिल गया है मुझे, सतवीर सैनी, गौरव सैनी, बिजनौर से। आप ऑडियो मैसेज भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्त इसको सुनने की हमारे पास अभी तो सुविधा इस समय मतलब कैसे सुन पाएंगे, हम तो बहुत सारे मैसेज पढ़ रहे हैं। किसी भी फिल्म का गाना सुना दीजिए, तो बिल्कुल जी, हम आपको लगातार अलग अलग फिल्मों के गीत पहुंचा रहे हैं आप तक। जिला मुरादाबाद से, ग्राम दुल्हापुर से कई हमारे साथी हैं जो उन्होंने मैसेज किया है, कहा है कि हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। और नाम है इनके, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। इसके अलावा मैसेज किया है डॉली ने दिल्ली से, लिखा है कि योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, फिट रहने के लिए सोने, उठने और खाने का टाइम फिक्स्ड है मेरा, सदा भोजन लेती हूँ और अच्छा, मुझे लगा सदा भोजन लेती हैं और सादा भोजन लेती हैं, दोनों अच्छा, ये दोनों ही चीज़ें हो तो अच्छा है। आगे लिखा इन्होंने कि डफली वाले डफली बजा, मैं नाचू तू नचा, मुझे नाचना नहीं डफली बजाना आसान लगता है, नाचना किसी और को पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपने ये कहा, हमने आपकी बात को पढ़ा और आपका जो मैसेज है आपके सुनने वाले लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी यूपी के रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गांव से लिखते हैं, गाने के इन्होंने कुछ बोल लिखे हैं और वो गाना सुनने की फरमाइश की है। और भी कुछ हमारे साथी हैं जो हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, बोधराज खोरवाल, कमरा रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, ये लोग उत्तम नगर दिल्ली से हैं। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी हमारे साथी हैं जिनकी पसंद के गीत हमने उन तक पहुँचा दिए और अब एक और गीत आप सभी तक पहुँचा रहे हैं।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
9: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
8: क्या ये जांच उपलब्ध है?
10: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
11: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
10: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
11: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
12: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस प्रोग्राम में अब समय वो आ गया है कि हम आपसे अनुमति लें, लेकिन चलते चलते आपके कुछ और मैसेजेस और एक और गीत आपकी पसंद का तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद आप प्रोग्राम जो सुनेंगे वो कौन कौन से हैं। 2 बजे से आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आशियाना में छोटे उस्ताद, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगी साइमा। और 3 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और आज का जो रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम है, आज के इस खास दिन पर है, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योग। और इसमें एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शालू गुप्ता, योगाचार्य, इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे। और 4:05 से होगा कार्यक्रम अल्फा जन, जिसमें आज आप बन सकते हैं रेनबो जीनियस, और आपको रेनबो जीनियस बनाने की कोशिश करेंगी साइमा। और 5:05 पर होगा प्रोग्राम जिसका नाम है क्या, सिटी लाइट्स। निशा तंवर इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगे। और हम पहुंचते एक बार फिर से आपके मैसेज की ओर। सोनिया विहार दिल्ली से आरव और अंश का मैसेज आया है, इन्होंने अपनी बात लिखकर पहुंचाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं वक्ता रामजी आदित्य जी और अथर्व भाई ने मांडवी राजस्थान से। और साथ ही मैसेज किया है प्रगति ने भी पटना से, इन्होंने मैसेज किया, एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और मैसेज कई हमारे और साथियों का आया है जिन्होंने अपनी अपनी फरमाइशें लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। मलकापुर से अशोक कुमार आहूजा, आज के इस खास दिन पर फादर्स डे पर शुभकामनाएं दी हैं। SDR सादिर वेस्ट बंगाल से, इन्होंने भी मैसेज किया है। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी हमारे साथी हैं। अनीता वर्मा दिल्ली से एक बार फिर से इन्होंने मैसेज किया है। और फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहान, फरीन, फारिया और ताहिरा का भी मैसेज आया है। इसके अलावा अब्बासी परिवार भी इनके साथ है, इन सभी लोगों ने मैसेज किया है हमें। और मैसेज करने वालों में हमारे कुछ और भी साथी हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मैसेज नहीं शामिल हो पाया तो बुरा मत मानिएगा, वैसे हमारी कोशिश पूरी रही है कि आपके से ज़्यादा मैसेज हम शामिल करें। ईशा पवार का भी मैसेज आया है। और मैसेज भेजने वालों में कुछ और भी साथी हैं जिनकी फरमाइशें जो हैं पूरी नहीं हो पाई, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आपका नाम तो शामिल करने की पूरी कोशिश की है। और अच्छा लगता है जब आप अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाते हैं और आपकी बातें हम और लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो अब राजेश को दीजिए अनुमति और आज के इस खास दिन पर फादर्स डे की एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और सुनते हैं ये गाना। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। मैं सायमा आपके साथ लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम आशियाना और छोटे उस्ताद। छोटे उस्ताद की बात की जाए और हमारे नन्हे मुन्नों को याद ना किया जाए, भला ऐसे कैसे हो सकता है ना? क्योंकि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना, वो किस तरह से इस समर वेकेशन को इंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं और कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या सारा वक्त टीवी पर बिता रहे हैं, आज जानेंगे। और बातें भी कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक हम कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से अपने प्रोग्राम के जरिए बात कर सकें। और क्या कुछ होगा इस प्रोग्राम में खास बताऊंगी आपको, लेकिन गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं सैम आपके साथ। और कहते हैं ना, वाकई में जब बच्चों की बात आती है तो बच्चे कहीं ना कहीं मस्ती में हमेशा झूमते रहते हैं, और जब समर वेकेशंस हो तो बाबा बस पूछिए मत। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं थक हार के कि इतना शोर मचा रखा है, इतना उछल कूद मचा के रखी है ना, तो अब इन्हें या तो टीवी ऑन करके दे दूँ या मोबाइल पकड़ा के बिठा दूँ, और बस बच्चे उसमें पूरा दिन कैसे टाइम निकालते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन कुछ खास एक्टिविटीज़ ऐसी जो हम बच्चों को बेहतर बनाने के लिए इन समर वेकेशंस में कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए छुट्टियां भी काफ़ी सारी गुजर गई हैं, और बच्चों ने क्या कुछ किया ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में, कहाँ गए, क्या अपनी दादी के गए या नानी के गए, क्या कुछ इंजॉय किया, कौन सी नई एक्टिविटी करी, कहाँ बाहर घूमने गए और किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, ये हम ज़रूर आज कुछ हमारे ख़ास दोस्त हमारे साथ रहेंगे, छोटे प्यारे नन्हे नन्हे से बच्चे, और उनसे हम जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जब हम कुछ नया अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं या उनके साथ हम एक्टिविटीज में जुड़ जाते हैं ना, तो वाकई में हमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और कहा जाता है ना कि बच्चे सिर्फ हम ही बच्चों को नहीं सिखाते, हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कभी देखा है बच्चे कभी थकते नहीं हैं और हम थकते हैं, और कभी कभी मोटिवेशन हमें बच्चों से ही मिल जाती है कि भाई ये कभी नहीं थकते, ये कभी नहीं रुकते, तो हम क्यों रुकें, हम भी तो कर सकते हैं ना। बच्चे कभी कभी बड़ों को मोटिवेट कर देते हैं। फिलहाल बातें होंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी चलता रहेगा, और देखेंगे कौन रहेगा हमारे साथ। फिलहाल

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ सैम आपके साथ। और यहाँ पर कौन है हमारे साथ, बात करेंगे एक छोटे उस्ताद प्रोग्राम में। कोई छोटा उस्ताद अगर हमारे साथ हो तो कहना ही क्या है ना। और जानते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन?
1: मैं तुरफा।
0: तुरफा। ओके तुरफा, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं?
1: फोर्थ
0: आप फोर्थ क्लास में पढ़ती हैं, किस स्कूल में?
1: अर्वचीन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
0: ओके, तो तुरफा आपकी छुट्टियां कैसी बीत रही हैं अभी?
1: बहुत अच्छी।
0: बहुत अच्छी। और क्या किया आपने इन छुट्टियों में?
1: इन छुट्टियों में हम घूमने गए, इंडिया गेट और मॉल गए थे। हमारे कजिन आए थे, हम उनके साथ भी बहुत एंजॉय करे। और मेरी स्विमिंग क्लासेस भी लगी हैं।
0: ओके, तो मतलब ये है कि आप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं इन छुट्टियों में।

0: समर वेकेशंस में। अच्छा, पढ़ाई का कैसे रहता है आपका? पढ़ाई कैसे करती हैं आप? कैसे मम्मी के साथ बैठ के पढ़ती हैं, पापा के साथ बैठ के पढ़ती हैं, या अकेले पढ़ती हैं?
1: मैं तो अभी ट्यूशन जाती हूँ, 4 o'clock मैं ट्यूशन जाती हूँ,
0: फिर
1: और हम मुझे मम्मा छोड़ने जाती हैं कभी कभी, जब कोई बात करनी होती है मम्मा को।
0: जी। अच्छा, मम्मा को बात करनी होती है, तो मम्मा कैसे बात करती हैं, किससे बात करती हैं? आपसे करती हैं, किसी और से करती हैं?
1: ट्यूशन मैम से करती है कि तुलसा कैसे कर रही है, या कहती है कि आज ये करा देना वो करा देना।
0: अच्छा, आज आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे है,
1: यस।
0: तो कुछ खास किया आपने आज?
1: नहीं
0: नहीं, आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती?
1: करती हूँ, मैं स्विमिंग के लिए जाती हूँ, मेरी क्लासेस लगी हुई हैं।
0: अच्छा, तो मतलब पूरी जो समर वेकेशन है वो आपने एंजॉय किया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया? हाँ, ओके। और आज फादर्स डे भी है, आप कुछ फादर को कहना चाहेंगे अपने?
1: मैंने अपने को हैप्पी फादर्स डे विश करा और उनके लिए कार्ड भी बनाया था।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा तुरफा आपसे बात करके, और आई होप कि आप इसी तरह अपनी वेकेशंस एंजॉय करें और आज योगा डे भी सेलिब्रेट करें, फादर्स डे भी सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: यू वेलकम,
0: थैंक यू, बाय
1: बाय।
0: देखो दोस्तों, होता है ना, छोटे छोटे बच्चों से बात करके पता चलता है कि भाई क्या कुछ खास कर रहे हैं बच्चे, और इसी तरह से चीज़ें बच्चों की लाइफ में जब हम पेरेंट्स उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, तो किस तरह से चीज़ें चेंज होती जाती हैं, बच्चे किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं और कितना इन्जॉय करते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कुछ और बच्चों से जुड़ने के लिए, कुछ और बच्चों की समर वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं, और आज योगा डे और फादर्स डे कैसे सेलिब्रेट करें, बात करेंगे। फिलहाल खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
5: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
7: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
6: हाँ, सही है, इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
7: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
6: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण

0: मिनके।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: एक छोटे से ब्रेक के बाद सायमा फिर आपके साथ लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम आशियाना। और यहाँ हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में छोटे उस्ताद की, छोटे उस्ताद जो वाकई में इन समर वेकेशंस में कैसे क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ खास कर रहे हैं। और ख़ास करके आज अगर हम बात करें इंटरनेशनल योगा डे की, फादर्स डे भी है, इंटरनेशनल योगा डे भी है। और इंटरनेशनल योगा डे की अगर हम बात करें तो भाई सेहत भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अब चाहे वो बड़ों की सेहत हो या हमारे नन्हे मुन्नों की सेहत हो, हर चीज़ सेहत से जुड़ी है। और ऐसे में अगर हम कुछ ख़ास आसन की बात करें, जो ख़ास योगा पोजेज़ होते हैं, उनमें से एक आसन की आज मैं बात करना चाहती हूँ, जो है हल आसन। और ये फॉरवर्ड बेंडिंग पोज है योगा का, जो कुछ अपने ख़ास कहते हैं ना, जो आपसे हेल्थ से जुड़े जो आपके बेनिफिट्स होते हैं उनके लिए बहुत खास ये आसन है। और अगर हल आसन, जिसमें हल का अर्थ है हल और आसन यानी कि योग मुद्रा की ओर संकेत, और अंग्रेजी में इसे प्लो पोज के नाम से भी जाना जाता है। और हल आसन कैसे करना चाहिए, ये हल आसन के फायदे, कहते हैं ना कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। इसके कुछ ख़ास फ़ायदे ये हैं कि हल आसन आपकी पूरी रीढ़ को लचीला बना देता है, मांसपेशियों को फैला देता है, और आपकी जो ढीली कहते हैं ना, जो कभी कभी आपकी रीढ़ की हड्डी जो आपको ढीली फील होती है या एकदम स्टिफ फील होती है, तो उसकी जो पकड़ है, उसकी जो ताकत है रीढ़ की हड्डी की, उसको काफ़ी मजबूत बना देता है। इसके साथ साथ ये जो आसन है ना, हल आसन, ये ऐसी मुद्रा है जो वजन घटाने में काफ़ी मदद करती है, और ख़ासकर पेट की जो चर्बी है उसे कम करने में भी काफ़ी हद तक बहुत कारगर साबित होता है ये आसन। तो इस तरह से अगर हम कुछ योगा आसन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें ना, तो बहुत हद तक आप अपनी सेहत को सुधार सकते हैं, अपने आप को संवार सकते हैं, निखार सकते हैं। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर चलता रहेगा और आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है छोटे उस्ताद। फिलहाल एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए, कहीं मत जाइए, बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

0: पापा तो बैंड बजाए। कोई बात नहीं, फादर्स डे है भाई, पापा कितना भी बैंड बजाए अच्छे के लिए बैंड बजाते हैं ना। और अगर पापा बैंड नहीं बजाएंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? पापा की डांट भी तो बहुत ज़रूरी है ना, है ना। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी। प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है आपका अपना छोटे उस्ताद, और यहाँ मैं हूँ सैम आपके साथ। और छोटे बच्चों से जहाँ बात करने का मज़ा है ना, सीरियसली क्या कुछ कर रहे हैं आज कल इन छुट्टियों में बच्चे। बहुत सारे बच्चों से आज दिल कर रहा है कि बात की जाए, मालूम किया जाए और क्या है, कौन है हमारे साथ, देखते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन, नाम
1: मैं
0: बताइए।
1: अलीसिया। मैं
0: हाय अलीफिया, कैसी हैं आप?
1: सही हूँ।
0: ओके, आप किस क्लास में पढ़ती हैं?
1: मैं फिफ्थ।
0: 5th में पढ़ती हैं। ओके, तो अभी आपकी समर वेकेशंस कैसी चल रही हैं?
1: अच्छी चल रही है। हाँ,
0: कहीं गई हैं आप घूमने?
1: गई
0: कहाँ गई?
1: मैं सुंदरनगर से
0: ओके,
1: और इंडिया गेट,
0: वेरी गुड।
1: जू, प्लानिटोरियम,
0: ओके, तो मतलब ये है, ओके, तो मतलब ये है कि आपकी जो समर वेकेशंस हैं वो बहुत अच्छे से बीत रही हैं, गुजर रही हैं, है ना। तो क्या कुछ एक्सप्लोर किया आपने, मतलब आप सुंदर नर्सरी गई, क्या कुछ देखा आपने वहां पर, थोड़ा सा बताएं जी।
1: मैंने सुंदर नर्सरी में वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स देखे। वहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स थे जो मुझे तोड़ने थे, लेकिन मुझे तोड़ नहीं पाई।
0: ओके, चलिए, तो अच्छी चीज है कि आपको आपको ग्रीनरी पसंद है।
1: हाँ,
0: ओके, अच्छा, अभी हाल फिलहाल आपको पता है आज कौन सा डे है?
1: आज फादर्स डे है
0: और
1: और इंटरनेशनल योगा डे।
0: वेरी गुड, तो फादर्स डे पे आज आप क्या कर रही हैं खास?
1: आज फादर्स डे पे मैं अपने पापा को एक बुके दिया है और फादर्स डे विश करके दिया है, और केक कटिंग भी किया, सेलिब्रेट किया अच्छे से बहुत।
0: बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, पापा खुश हो गए।
1: हाँ,
0: चलिए, अच्छी बात है। और इंटरनेशनल योगा डे जैसे आपने बताया, तो क्या कुछ किया योगा डे पर आपने?
1: योगा डे पे जैसे चक्रासन।
0: ओके, तो मतलब आप योगा पोजेस कर लेती हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: मतलब आप थोड़ा सा, आपको ये योगा करना अच्छा लगता है? हाँ, ओके। और हॉलीडेज हो गए, हॉलीडेज कंप्लीट आपके अब होने वाले हैं।

0: होमवर्क हो गया, कहाँ ज्यादा टाइम बिताया, टीवी पर या फोन पर या पेरेंट्स के साथ या फिर अपनी बुक्स के साथ, क्या किया?
1: स्पेंड तो मैंने टाइम टीवी और पेरेंट्स बस।
0: टीवी और पेरेंट्स? बुक्स नहीं पढ़ने में मजा आता आपको?
1: अगर कहूँ तो मेरे पास एक पंचतंत्र की बुक है, तो
0: ओके
1: मैं
0: okay.
1: वो रीड कर लेती हूँ कभी कभार।
0: अच्छा, कभी कभार बुक रीड कर लेती हैं। और हॉलीडे होमवर्क किसने कंप्लीट किया, आपने कि पेरेंट्स ने?
1: पेरेंट्स और मैंने दोनों,
0: अच्छा,
1: मैं तो बस देख लेती हूँ।
0: आप देख लेती हैं, मतलब पेरेंट्स आपकी प्रॉपर हेल्प कर रहे हैं।
1: जी
0: चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि ज्यादा देर ना टीवी और मोबाइल पर नहीं रहना चाहिए, ये आपकी आईज को ना बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, पता है आपको?
1: जी
0: थैंक यू अलीफिया हमसे बात करने के लिए, और होप सो कि आपने फादर्स डे इतने अच्छे से इंजॉय किया, और आप बता रही हैं कि आज आपको पता है इंटरनेशनल योगा डे है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए,
1: थैंक
0: बाय बाय।
1: यू, बाय बाय।
0: कहते हैं ना कि बच्चों के साथ जब बात की जाती है तो सीरियसली मजा बन जाता है, और जब छोटे बच्चों के साथ बात की जाती है तो सच में वाकई मजा दुगना हो जाता है। बच्चों के एक्सपीरियंस और किस तरह से वो अपनी इन छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि ज्यादा देर तक और ज्यादा वक्त तक अगर आप टीवी के साथ बंधे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, या मोबाइल के साथ आप अपना वक्त गुजारते हैं, तो बहुत हद तक आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को पीछे छोड़ देते हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई को एक तरफ छोड़ देते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ साथ आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो हो सके, जितना हो सके, इन चीजों से दूर रहें और ख्याल रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी, अपनी सेहत का, अपनी आंखों का, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर हमारा साथ देती हैं। सेहत है तो सब कुछ है। इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: Did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
7: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
6: क्या ये जांच उपलब्ध है?
8: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
9: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
8: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
9: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
10: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat. Powered by Indian talent, Indian technology.

0: एनर्जी एंड इंडियन डिटर्मिनेशन.
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
3: एक छोटे से ब्रेक के बाद सायमा फिर आपके साथ लेकर आई है आपके लिए प्रोग्राम आशियाना, और उसमें हैं हमारे छोटे उस्ताद नन्हे मुन्ने बच्चे आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भाई उनकी जो समय वेकेशंस हैं वो कैसी गुजर रही हैं, क्या कुछ वो सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं. फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी लेकिन खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा. दिल से दिल तक.

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूँ सैम आपके साथ, और इस वक्त चल रहा है प्रोग्राम आपका अपना छोटा उस्ताद। अब कौन है हमारे साथ फिलहाल? कहते हैं ना, जहाँ बच्चे हों वहाँ थोड़ी सी गप्पे शप्पे ना हो और उनसे पूछा ना जाए कि भाई कैसे अपना टाइम बिता रहे हैं, गुजार रहे हैं, तब तक कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लगता है। फिलहाल आज एक बार फिर और इस वक्त एक बार फिर कोशिश करते हैं जानने की कि कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: आप?
1: हेलो, माय नेम इज हुजैफ शाह।
0: ओके, योर नेम इज हुजैफ शाह। हुजैफ,
1: आई
0: आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
1: एम इन थर्ड क्लास।
0: थर्ड क्लास, वेरी गुड। तो आपने अपनी ये हॉलीडेज, हुजैफ, कैसे आप एंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बार आप खास अपनी?
1: माय हॉलीडेज वर सो गुड। आई हैव गॉन टू विजिट माय होम कश्मीर। आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स देयर। I have visited Dal Lake. I have seen few places there.
0: Okay, so you have visited Dal Lake. What you have seen there?
1: There was fishing man, and there was a lot of rides.
0: Okay, lots of ride. What kind of ride you have done there?
1: I have. There was a balloon that we have to roll the balloon, and we have to the balloon was floating on the water, so we have to spin just the balloon.
0: Okay, तो दिल्ली में कहाँ घूमे? कश्मीर का तो आपने बताया कि आप कश्मीर गए, दिल्ली में कहाँ घूमे, क्या विजिट किया?
1: दिल्ली में तो हम लोग बहुत सारी जगह घूमे, इंडिया गेट, मॉल्स।
0: ओके, इंडिया गेट में क्या एंजॉय किया?
1: वी हैव बाइट लाइटिंग टॉयज, लाइक लाइटिंग ग्लासेस, लाइटिंग मोर टॉयज,
0: मोस्ट ऑफ द टॉयज यू एंजॉय लाइटिंग टॉयज।
1: यस, एंड बाइट थ्री कॉमिक्स फ्रॉम इंडिया।
0: थ्री कॉमिक्स
1: दिल्ली?
0: थ्री कॉमिक्स,
1: यस, थ्री कॉमिक्स, दे आर स्टोरी बुक्स।
0: ओके, स्टोरी बुक्स। तो मतलब मम्मा के साथ स्टोरीज बुक पढ़ने में मजा आता है या पापा के साथ पढ़ने में मजा आता है?
1: मदर
0: के साथ पढ़ने में मजा आता है। ओके, और आज आपको पता है कोई आज खास दिन है, आज कोई डे है जो बहुत खास है?
1: इंटरनेशनल योगा डे एंड फादर्स डे।
0: फादर्स डे, ओके, तो व्हाट हैव यू डन ऑन फादर्स डे, क्या किया फादर्स डे पर?
1: आई हैव गिवन अम न्यू ब्रांड शूज फ्रॉम बाटा।
0: ओके, बाटा के शूज ही आपने अपने पापा को?
1: यस।
0: और योगा डे पर क्या किया आपने?
1: योगा डे आई हैव डू स्ट्रेचिंग।
0: ओके, यू हैव डन स्ट्रेचिंग। ओके, स्ट्रेचिंग। ओके, तो यू हैव डन लॉट्स ऑफ मौज मस्ती। ओह, और मम्मा पापा ने क्या किया? आपने मौज मस्ती तो की, मम्मा पापा को परेशान किया?
1: नो।
0: मम्मा पापा खुश?
1: यस, दे आर सो हैप्पी। यस।
0: तो मम्मा पापा कभी ये नहीं कहते कि भाई आप हमें इतना खुश रख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं?
1: Yes, I am a good boy.
0: You are a good boy.
1: I can do my homework by myself.
0: By yourself?
1: Yes.
0: Your parents didn't help you? आपको help नहीं की थी आपके parents ने?
1: When I think that something is wrong, so I ask them take their help.
0: Very good. हुजैफ, आपसे सीरियसली बहुत अच्छा लगा बात करके, और अच्छा लगता है जब बच्चे अपने आप कुछ एक्टिविटीज करते हैं, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर हुजैफ।
1: ओके, बाय बाय,
0: बाय। देखा दोस्तों, कहते हैं ना कि कई बार जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत एक्टिव होते हैं, वो भी बहुत अपने आप में बहुत सारी चीजें करने में माहिर होते हैं, बशर्ते

कि उनको सिखाया जाए कि वो किस तरह से अपने कामों को अंजाम दे सकते हैं। और समर वेकेशंस की तो खास बात यही है ना कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं परेशान तो हो जाते हैं और फिर खुश भी हो जाते हैं जब बच्चे अपने आप से कुछ अच्छे अच्छे काम करके दिखाते हैं, तो पेरेंट्स से ज्यादा बेहतर उस चीज को अप्रिशिएट कोई और नहीं कर सकता। फिलहाल इसी तरह बातें करते रहेंगे, लेकिन वक्त की कमी भी है हमारे पास और हमें जाना भी है, लेकिन खूबसूरत गानों का सफर चलता रहेगा लगातार आकाशवाणी रेनबो पर। साइमा को अभी फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेगी साइमा एक प्यारे से गाने के साथ, फिर आपसे चलते चलते बाय टेक केयर तो जरूर बोल के जाऊंगी। ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर के इस बेहद खास एपिसोड में। जी हाँ, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे। दोस्तों, सुबह से योग दिवस की शुभेच्छाओं और शुभकामनाओं का तांता तो लगा ही होगा, लेकिन हमें भी अवसर मिला है इस प्रोग्राम के जरिए हम आप तक एक बार फिर से योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं पहुंचाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। चलिए मिलते हैं योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता से, जो आज हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर शालू गुप्ता, और आपको भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: नमस्कार, धन्यवाद। योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और ये बहुत ही बड़ा विषय है। मैं ये कहना चाहूंगी कि 21 जून का यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी यह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का उचित समय है। तो 21 जून का जो दिन रखा गया है, यह बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है, और हम आज योग दिवस के अवसर पर बहुत सी चीजें सीखेंगे और समझेंगे, और ये जानेंगे कि योग का सही अर्थ क्या है।
3: तो डॉक्टर गुप्ता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग कितना आवश्यक है, ये अब हम सभी कुछ को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर जानेंगे योगाचार्य शालू गुप्ता से, आपसे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है योग फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग।
4: देखिए, योग का अर्थ है जोड़ना। जैसा हम हमेशा से समझते आए हैं, योग किसी भी चीज को जोड़ता है। तो योग हमें मानसिक तौर पर शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य की बात करें तो योग हमें पूर्ण तरीके से जोड़कर हमें एक पूर्ण हेल्थ मिलती है। अब महर्षि पतंजलि ने इसीलिए योग को अष्टांग योग कहा है, और योग को 8 पहलुओं में बांटा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यदि हम यम नियम की बात करें तो यम नियम है शरीर शुद्धि और आहार शुद्धि। योग आसन जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यदि हम अपने शरीर को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रखना सीख लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों पर निजात पा सकते हैं। जब हमारा शरीर शुद्धि हो गई है, आहार शुद्धि हो गई है, और हमारा शरीर अपने आप को कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस में रख सकता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो हम मानसिक तौर पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और जिससे हम जो आगे के पड़ाव हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। बहुत सी क्रियाएं हैं जो योग में की जाती हैं इन चीजों को अचीव करने के लिए, तो हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल शालू जी, तो योगाचार्य शालू गुप्ता हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं सुजाता रथ, और हमारे तमाम लिसनर्स बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे हमारे आज के योगा एक्सपर्ट से। लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद लौटेंगे आज के बेहद खास रेडियो डॉक्टर में, स्पेशल ऑन इंटरनेशनल योगा डे।

0: स्वास्थ्य के लिए योग, यही आज का हमारा विषय है ऑन वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता और मैं हूं साथ में सुजाता रथ। तो शालू जी, आपने बताया कि योग का जो शाब्दिक अर्थ है वो ही है जोड़ना। तो एक सवाल आया है मनोहर लाल गांधी जी का कि योग द्वारा हम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं, अपने आप से कैसे जुड़ सकते हैं।
1: देखिए, आज का जो समय है इसमें हम लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं मेंटली। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स एट द वेरी सेम टाइम। होता क्या है कि हम लोग हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी फूड हैबिट्स हैं, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो ऑफिस एनवायरमेंट है, इससे हमने बिल्कुल अपनी बॉडी की प्रायोरिटी को खत्म कर दिया है। हमें सीखना यह है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया सीखने के लिए हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारा शरीर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। जब तक हमारी ब्लड रिपोर्ट्स में कोई बीमारी नहीं आ जाती तब तक हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं। योग करने से क्या होगा? योग का सबसे पहला अर्थ ही है जोड़ना। और जैसे मैंने कहा, योग को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में नियम बनाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप अपने दिनचर्या में नियम बनाएंगे वैसे वैसे आपके हर चीज का नियम हो जाएगा। सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय, शौच जाने का समय। और जैसे जैसे आपका समय फिक्स होता जाएगा वैसे वैसे आप ये समझेंगे कि आपके शरीर में जो सुबह उठते ही थकान होना, सारा दिन परेशानी रहना, बॉडी में लथार्जी रहना, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होना, ये सब चला जाएगा। आप अगर एक अच्छा आहार अपनाएंगे, सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, सीजनल लिक्विड्स लेंगे, तो उसको लेने के बाद आपका शरीर निरोगी रहेगा। और जब शरीर निरोगी रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जीवन में आपके शरीर की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो जैसे जैसे शरीर निरोगी होगा उसके बाद जब हम अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो हम अपने शरीर को जिसे हम कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऐसे ऐसे हम अपने शरीर को परमात्मा से मेल कर पाएंगे, जिसमें फिर हमारी धारणा, ध्यान और समाधि आ जाती है, जिसमें हम राम नाम, प्रभु नाम सब कुछ जोड़ देते हैं।
0: जी, कुछ कॉलर्स हैं। हेलो।
2: हाँ दीदी, प्रणाम।
0: प्रणाम, कौन बोल रहे हैं?
2: सतीश कुमार पांडे।
0: हाँ सतीश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
2: आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद
2: जी। और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। डॉक्टर मैम, मेरे से आपसे सवाल ये है कि कुछ आंखों के लिए कोई योगा है क्या?
1: हाँ जी बिल्कुल है। आँख
2: को थोड़ा बता दीजिए।
1: हाँ जी, आपकी आंखें कमजोर हैं या आंखों से पानी आता है?
2: जी पानी नहीं है मैम, आँख थोड़ा कमजोर है।
1: ठीक है, देखिए आंखों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं त्राटक। वो हमारे षटकर्मा का पार्ट है। उसमें जनरली हम करते क्या है कि आपने किसी भी, त्राटक का अर्थ है कि आप किसी भी वस्तु पर लगातार देखते रहें। इसको करने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने मान लीजिए कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर लिया और एक मोमबत्ती को जला लिया। आप उस मोमबत्ती की लौ को एक टक देखते रहेंगे, तब तक देखते रहेंगे जब तक आपकी आंखों में आंसू आने वाले हैं। मतलब आंसू आने से पहले ही आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। ये एक्सरसाइज आप कई और जगह और कई और चीजों से भी कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरी चीज है अपनी आंखों को आंवला से धोएं, आंवले के पानी से धोएं या त्रिफला के पानी से धोएं। रात को त्रिफला भिगा दें और सुबह उससे अपनी आंखों का आई वॉश करें, उससे भी आंखों में बहुत ही अच्छा असर आता है। तीसरी चीज
2: त्रिफला
1: और तीसरा है विटामिन ए रिच चीजें खाएं, जिनमें जैसे पपीता है, सेब है, अनार है। आहार का भी ध्यान साथ साथ रखना पड़ेगा, तभी आपकी आंखों में रोशनी वापस आएगी और आपकी आंखें पहले से बेटर हो जाएंगी।
0: शुक्रिया सतीश जी, दार्जिलिंग से हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और कॉलर है, उनसे जुड़ते हैं। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
0: हाँ नमस्कार,
3: मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ।
0: जी राजा साहब बताइए।
3: जी जी, आज जैसा कि योग दिवस है तो मैं खास करके ये जानना चाहूंगा, जैसे हम लोगों का काम होता है कि काफी 8-9 बजे से बैठो और शाम को लगभग 5-6 बज जाता है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टहल नहीं पाते हैं, इस वजह से जो है कुछ मोटापा भी बढ़ने लगता है। तो कौन से आसन या योगा है हमें मैम से पूछना है कि जो अपने आप सुबह या शाम में उनका उपयोग करें और अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान केंद्रित करके अपनी सेहत

0: फिट रखें और ज्यादा मोटापा ना बढ़ने पाए, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं।
1: हाँ जी राजा जी, देखिए इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, कई सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। नंबर वन, जब आप अपने ऑफिस में आते हैं और आपको ये पता है कि मैंने 7 से 8 घंटे बैठना है, तो आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अपने अपने काम के दौरान हर 30 से 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट मैं टहलने के लिए जाऊं, अपनी सीट पर ही ना बैठा रहूं। नंबर थ्री, अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं या कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि टांगे लटकाकर जमीन पर ना रखी हों, मतलब ये है कि आप पैरों के नीचे एक छोटी सी चौकी रखें कि आपके पैर जमीन से ऊपर की तरफ हों, इससे आपकी कमर पर कम असर आएगा और आप ज्यादा देर तक अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। चौथी चीज है कि जो भी हमें ये नहीं सोचना कि मैं अब ऑफिस आ गया हूं तो मैं डिब्बा बंद खाना ले आया हूं तो मुझे बस रोटी सब्जी खाकर घर चले जाना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जिस भी रीजन में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, वहां पर अवेलेबल जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी जूसेस हैं या जो भी सलाद है, आपको उसका पूरा सेवन करना है। यदि आपका भोजन अच्छा है तो आपके शरीर में फैट जमा नहीं होगा।
0: जी।
1: अब रही बात आसन की, आसन के लिए हमें ये ध्यान रखना है जो लोग बैठे रहते हैं कि हमेशा जो आगे झुकने वाले आसन होते हैं जिसमें हमारा पेट दबता है, हमें ऐसे आसन ज्यादा करने चाहिए। और क्रियाओं में आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं।
0: आसन सुबह करें कि शाम को भी कर सकता है?
1: शाम को सूरज ढलने से पहले आप कर सकते हैं। और खाने के मतलब खाली पेट होना चाहिए जब भी आप आसन करेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अग्निसार क्रिया बहुत ज्यादा फायदे मंद है, जिसमें सांस लेना, सांस छोड़ना और उसके साथ साथ पेट को घुमाना, इससे बहुत लाभ होगा आपको।
0: ओके मैम।
2: जी जी राजा साहब, बहुत ही अच्छे से शालू जी ने हमें बताया ये सारी बातें। एक मैसेज है मोहम्मद सरफराज आलम जी का दर्शना बाजार से कि ये साइटिका के दर्द से परेशान है, कौन सा योग करना चाहिए?
1: हाँ जी, देखिए साइटिका में आप साइटिका में वैसे तो बहुत से आसन होते हैं, जैसे गरुड़ आसन है, वज्रासन है, गौमुख आसन है, पवन मुक्त आसन है, लेकिन हमें हर इंसान को अपनी बॉडी का नेचर देखना चाहिए कोई भी आसन करने से पहले। यदि तो आपको दर्द एक पैर में जा रहा है तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी, और यदि दर्द दोनों पैरों में जा रहा है तो कुछ और प्रिकॉशंस रखनी पड़ेंगी। तो जो बहुत बेसिक सी चीज है उसमें क्या है, जैसे आप सीधे लेट जाएं और अपने पंजों को एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो कम से कम 10 बार इसे रिपीट करें दोनों ही पंजों के साथ, नंबर वन। नंबर टू, जो आपका पैर है उसको आपको सीधे ही लेटे रहना है और पैर को बिल्कुल स्ट्रेट, अपनी टांग को ऊपर उठाना है। जब आपकी टांग ऊपर उठेगी तब तक उठाएं जब तक आपसे सहन होता है कि वो दर्द हो रहा है। जब आपको लगता है दर्द सहन से बाहर है तब वहां स्टॉप कर दीजिए। तो उस पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और इसी तरह दोनों पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको आसन के नाम बता दिए हैं, बस आपको खाने पीने में भी ये ध्यान देना है कि आप वायु कारक चीजें ना खाएं, दूध और दही का सेवन छोड़ दें, और हार श्रृंगार के पत्ते बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, उन्हें उबालकर उसका पानी पी लीजिए।
2: रोहतक से नितिन कुंडू जी का सवाल है कि एट व्हाट एज आवर चिल्ड्रन कैन स्टार्ट योगा?
1: देखिए योगा के लिए तो कोई एज ही नहीं है। आपने देखा ना, जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है और अपने बेड पर होता है वो भी अपने हाथ पैर मारता रहता है, तो योगा के लिए कोई एज नहीं है। योगा और योग आसन तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, चाहे वो 2 महीने का बच्चा हो चाहे वो 2 साल का बच्चा हो, उम्र नहीं देखी जाती। सिर्फ ये देखा जाता है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे कोई हार्ट पेशेंट है या कोई और है तब हम योग नहीं कर सकते, अदरवाइज आप किसी भी उम्र में योगा कर सकते हैं।
2: तो अगर यहाँ पर अगर कोई बीमारी है किसी को तो वो किसी प्रशिक्षक के नियंत्रण
1: अगर आप
2: मार्गदर्शन में करें।
1: हाँ जी, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप किसी भी योग शिक्षक के प्रशिक्षण में ही वो करेंगे। हाँ जी।
2: और इन्होंने मैम एक और क्वेश्चन में क्या कि प्लीज सजेस्ट योगा फॉर शार्प मेमोरी।
1: ओके, देखिए शार्प मेमोरी के लिए तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपने गाना सुना, हम कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिसपे जब वो बजते हैं तो

0: मेरे पैर धुनकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हम बिल्कुल साइलेंट बैठे रहते हैं, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा, जब ये बजता है तो हमें ऐसा लगता है कि दिमाग बिल्कुल शांत है। तो शार्प मेमोरी के लिए हमेशा कोशिश करें कि आप बिल्कुल शांत धुने सुने, ओम चैंटिंग, ओंकार, इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। और डीप ब्रीदिंग करें। अच्छी मेमोरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राणायाम। कोई भी प्राणायाम करें, सांस भरें, रोकें और छोड़ें। जैसे जैसे आपकी सांस को रोकने की टेंडेंसी बेटर होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी मेमोरी शार्प होती जाएगी।
1: तो शालू जी, अपने गानों की बात कही कि ऐसे गाने जो जिनको हम एकदम शांत रहकर सुन सके, तो ये गाना जो मैं आपके पसंद का प्ले करने जा रही हूँ, मेरे ख्याल से ये गाना उस कैटेगरी में आता है। सुनिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज का विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर विशेष है ऑन इंटरनेशनल योगा डे। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शालू गुप्ता जी हमारे साथ हैं, योगाचार्य। डॉक्टर गुप्ता, कुछ देर पहले हमने एक गाना सुना था आपकी पसंद का, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं उनका ये कहना है, खास करके दिनेश दयाल जी ने कहा है कि आपके गाने को सुनकर हमें याद आया कि ओ योगा तेरे बिना क्या जीना।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: तो आज योग जो है हमारे जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है, मैं कहूंगी कि धीरे धीरे सारे विश्व में इस ये संदेश फैल चुका है और सभी के जीवन का जो है एक अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। कुछ कॉलर्स हैं जिनकी बात हम सुन ले। हेलो।
3: हेलो।
1: हाँ जी।
3: हाँ नमस्कार, मैम गुरविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
1: जी नमस्कार गुरविंदर जी।
3: डॉक्टर शालू गुप्ता जी को भी नमस्कार और प्रणाम।
2: नमस्कार।
3: मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी मरीज का एलोपैथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथी में इलाज चल रहा है, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसमें अगर योग की सहायता ले ली जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो क्या ये संभव है?
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव है। और सबसे पहले योग की सहायता लेनी चाहिए, फिर कहीं और जाना चाहिए।
3: मैडम एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहा है कि कई बार खाना खाते समय हिचकी आ जाती है, तो उस समय कौन सा योग करें?
2: वैसे ऐसे में देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम अपनी जीभ को पकड़ लें थोड़ी देर के लिए। जनरली आप 5-7-10 मिनट के लिए जीभ को पकड़ लेते हैं तो हिचकी आना बंद हो जाती है। दूसरी चीज है आप तुरंत पानी पी लें, उससे भी हिचकी बंद हो जाती है।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार। एक व्हाट्सएप मैसेज है शालू जी, ये हाँ लिखा है सरद चंद्र पाणिग्रही जी ने ओडिशा से। इनका 3 महीने पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है इनकी, और ये लिखते हैं कि सर्जरी से पहले ये बहुत सारे योगासन किया करते थे, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, वश्चिका, वज्रासन और भी बहुत सारे नाम इन्होंने गिनाए हैं, और अभी इनके जो स्टूल है वो क्लियर नहीं होता है। तो इन्हें पूछा है कि काइंडली एडवाइस विच टाइप ऑफ योगा और प्राणायाम कैन आई कंटिन्यू।
2: ठीक है, देखिए आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि आप किसी तरह की कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका पेट बंधा है। तो आप अग्निसार क्रिया कर सकते हैं, उससे भी आपका पेट साफ होगा। दूसरी चीज है मंडूक आसन, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है।
1: ये आसन ही कर सकते हैं। और पहली जो आसन किया करते थे वो
2: उसमें ओपन हार्ट सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्राणायाम नहीं करने चाहिए, तो आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिकवरी कितनी हो चुकी है। अगर आपकी बॉडी फुली रिकवर हो चुकी है तो आप धीरे धीरे आसन को अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है तो आप और थोड़े दिन रुक जाइए, तब तक आप सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर सकते हैं।
1: जी हेलो।
4: हेलो।
1: हाँ जी
4: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, बोलिए।
4: अंशुल बात कर रहा हूँ मेरठ से।
1: जी जी अंशुल बोलिए।
4: जी मैम मुझे गैस की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कुछ खा लिया उसके बाद गैस बन गई, बेवजह भी बन गई, क्या योग के माध्यम से इसका समाधान हो सकता है? दवाई बहुत खा ली।
2: हाँ जी अंशुल बिल्कुल हो सकता है। आपको ये देखिए कि जब आपको गैस बनती है तो आपका पेट फूल जाता है खाने के बाद।
4: बिल्कुल
2: ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी ऐसा हो तो आप वायु मुद्रा ट्राई कीजिए, जिसमें आपने अपनी जो सबसे पहली उंगली है हाथ की, उसके नाखून पर अंगूठे को रखना है। तो वायु मुद्रा जब हम करते हैं तो हमें डकारे आना शुरू होती है और हमारे पेट में जो जमा गैस है वो निकल जाती है। दूसरी चीज है कि गैस जो बनती है उसका सबसे ज्यादा समाधान होगा आपके खान पान से। जब आप अपना खान पान बदलेंगे तब गैस का समाधान होगा। तो आप खाने में जो कोशिश कीजिए, जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ज्यादा खाइए, जूस को ज्यादा लीजिए और पका आहार को कम कर दीजिए। और जब भी आप खाते हैं खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन पानी से ले लीजिए, उससे क्या होगा कि आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा गैस है

0: है तो आप रात को सोने से पहले अमलतास ले सकते हैं। अमलतास एक बहुत अच्छा हर्ब है, बहुत इजीली मिल जाता है। उसको उबाल के रात को पानी पीकर सोइए तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और आपको गैस नहीं बनेगी।
1: तो मैम ये वे वजह जो डकारें आती हैं क्यों आती हैं?
0: ये इसलिए आती हैं कि आपके अमाशय में जो खाना है वो पड़ा सड़ रहा है और वो निकल नहीं रहा। जैसे एक डस्टबिन में कूड़ा रहता है ना, तो उसमें से गैस निकलती रहती है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल उसी के लिए है। तो हमारे पेट में जो मल नहीं निकल रहा है इसलिए गैस बनती है। तो कुछ दिन आप अमलतास का पानी ले सकते हैं, दूध का फटा पानी भी ले सकते हैं। उससे जो आपके आंतों में गंदगी जमा है वो निकल जाएगी और फिर आपको गैस बनना बंद हो जाएगी।
2: राम मोहन विश्वकर्मा जी का मैसेज है इटावा से। ये सिलाई बुनाई का काम करते हैं और इन्हें कम से कम 10 घंटे बैठना पड़ता है। इनकी उम्र है 32 साल। इन्होंने लिखा है कि इन्हें कौन सा योगासन करना चाहिए।
0: देखिए, इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका काम है जैसे बैठने का और आपको अपने कंधे और हाथ यूज करने हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। जैसे आप ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और उन्हें गोल गोल घुमाया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। उसके बाद अपना पूरा हाथ सीधा किया और हाथ को घुमाया, जिससे आपके जो सर्वाइकल जॉइंट्स हैं, जो शोल्डर जॉइंट्स हैं, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहें। जितना ज्यादा आप अपने शोल्डर जॉइंट्स को और सर्वाइकल जॉइंट्स की मूवमेंट रखेंगे, उतना ज्यादा आप लंबे समय तक अपने काम को कर सकते हैं। तीसरी चीज है जो आपका नेक रीजन है, जो आपकी गर्दन है, उसको भी उस अपनी ठोड़ी छाती पे लगाइए और फिर सांस भरते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए और फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। तो यदि आप ये तीन चीजें कॉन्टिन्यूअसली फ्लेक्सिबली करते रहेंगे, सुबह 15 से 20 मिनट अपने आप को दीजिए, इससे आपके जॉइंट्स खुले रहेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा।
2: जी, और अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बताया कि जिनका बैठने का काम है लगातार ना बैठे रहें।
0: हाँ जी, हाँ जी, लगातार ना बैठे रहें और बीच में उठ के भी जब आपको लगता है हाथ पैर थोड़े से अकड़ गए हैं या कुछ है, तो फिर से वो एक्सरसाइजेस दोबारा कीजिए, मूव करते रहिए। हाँ जी,
2: हेलो
3: जी। हेलो,
2: हाँ, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं अनुराग वाजपेयी बोल रहा हूँ, यहाँ रायबरेली से।
2: जी अनुराग जी, बोलिए।
3: मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें अनुलोम विलोम बीच बीच में, जैसे एक दो महीने की है, बीच बीच में जब करते हैं तो कुछ इधर राइट, इधर बाएं साइड में सर में ऐंठन टाइप में हो जाती है और जब बंद कर देते हैं तो ठीक हो जाती है। तो इससे क्या कुछ ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि अनुलोम विलोम तो जैसे हमें सूट ही नहीं करता?
0: अच्छा, वैसे ऐसा होता नहीं है। आपको कहीं साइनस की तकलीफ तो नहीं है?
3: नहीं, एंजाइटी की तकलीफ है, मेडिसिन खाते रहते हैं।
0: ओके, तो ये तो हो सकता है कोई एंजाइटी का साइड इफेक्ट हो। वैसे अनुलोम विलोम से ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसको थोड़े समय के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए रेगुलर। जब आप थोड़े थोड़े समय के लिए करेंगे, मतलब जैसे 5 मिनट के लिए किया, 5 मिनट के लिए किया, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगी। छोड़िए मत इसे, बट इसका बेनिफिट ही होगा आपको।
2: जी,
0: आप एक काम कर सकते हैं आप, कि आप अपनी नाक में 3-3, 4-4 बूंद तेल डालिए रोज, कुछ दिन के लिए डालिए और फिर बताइए, फिर ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या ये ऐंठन हो रही है।
2: ओके, तो राय बरेली से हमारे ये श्रोता थे। तो शालू जी, अनुलोम विलोम जो है मुझे लगता है कि सबसे आसान
0: है, बिल्कुल,
2: योगासन, बिल्कुल, हर
0: बिल्कुल,
2: कोई इसे कर सकता। हाँ जी, है ना? हाँ, तो क्या फायदे हैं इसके?
0: अनुलोम विलोम तो देखिए, सांसों का लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, हम कहते हैं ना कि वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तो वायु है, वायु और जल है। तो जब हमारी सांसों का अंदर जाना और बाहर आना, ये पैसेज बिल्कुल क्लियर होता है, तो सबसे ज्यादा असर हमारी मेमोरी पर, हमारी एंजाइटी लेवल्स पर, हमारी सोच पर पड़ता है। अब आजकल क्या है ना कि बंद कमरों में हम बैठे हैं और हम वही ठंडी हवा ले रहे हैं, वही छोड़ रहे हैं। तो जब तक खुली हवा, अनुलोम विलोम जब जैसे जैसे हम करते हैं, वैसे वैसे एयर पैसेज पूरी बॉडी में होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, वी फील हैप्पी। हैप्पी एंड हैप्पी।
2: चलिए हैप्पी एंड हैप्पी हम फील करेंगे एक और गाना सुनने के बाद, लेकिन एक सवाल मैं ले लेती हूँ सीमा गांधी जी का, गाजियाबाद से लिखा है कि हम महिलाएं मॉर्निंग में घर का काम होने के कारण योगा प्राणायाम नहीं कर सकते, क्या दोपहर और शाम के वक्त

0: हम योग कर सकती हैं?
1: बिल्कुल कर सकती हैं। देखिए, शाम में कर सकती हैं, क्योंकि योग करने के लिए खाली पेट या खाने के 2.5 से 3 घंटे बाद ही योग करें, दोपहर में ना करें। मैं सजेस्ट करती हूं शाम को करें। और जो महिलाएं योग नहीं कर सकती हैं सुबह, वो योग की जगह खूब सारा पानी पिएं, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और ये कोशिश करें कि वो 10 बजे तक भूखे पेट ना रहें। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कोकोनट वाटर लें, ड्राई फ्रूट्स लें, सोक्ड ड्राई फ्रूट्स लें, उससे भी वो भी योग का ही हिस्सा है। आप योग को सिर्फ योग आसन से ना जोड़ें, योग का अर्थ आहार भी है। तो आप एक अच्छा आहार फॉलो कीजिए मॉर्निंग में और शाम को योगासन कर लीजिए। दैट विल गिव यू अ परफेक्ट हेल्थ।
0: जी वैसे शालू जी, इतने सवाल आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कि आपको आज क्या कहते हैं, आपको आज बोलने का ही मौका मिलेगा हमारे शो में। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि शालू जी थक जाए, तो चलिए उनकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं, हैप्पी हैप्पी करने के लिए।

0: एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑन इंटरनेशनल योगा डे। आज का हमारा रेडियो डॉक्टर है स्पेशल ऑन वर्ल्ड योगा डे, योग फॉर हेल्थ। हमारी एक्सपर्ट शालू गुप्ता जी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही, इतने कॉल्स आ रहे हैं और इतने मैसेजेस आ रहे हैं। तो शालू जी, हम अपनी तरफ से आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकते क्योंकि श्रोताओं की तरफ से ही बहुत बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: जी, अजय कुमार बात कर रहा हूँ।
0: हाँ जी अजय जी बोलिए।
1: कुछ ये जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 6-7 से और 12-13 साल तक, इन बच्चों के बारे में मैम कुछ बताइए, इनके लिए योगा कुछ बता दीजिए बच्चों के लिए।
2: बच्चों के लिए तो देखिए, सबसे अच्छा योगा ही खेलना है। अगर आप बच्चों को अगर हम देखिए, जब पहले की बात भी करें तो यदि बच्चे बाहर, आपको सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बाहर निकलने दें, बच्चों को घर में ही ना बंधे रहें। उनकी एक्टिविटीज फिक्स कीजिए कि उन्हें 1 घंटा रोज साइकिलिंग करनी है या 1 घंटा मिट्टी में खेलना है। अपने आप में ये सबसे अच्छा योग है बच्चों के लिए। बच्चे तो चलते फिरते ही इतने सारे स्टेप्स कर जाते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और भी नहीं कर रहे तो घर में 1/2 घंटा डांस कर लें, सबसे अच्छा योग यही है बच्चों के लिए।
1: धन्यवाद।
2: हाँ जी,
0: शुक्रिया। हेलो
3: हेलो
0: हेलो। हाँ जी
3: जी, एजाज अहमद, एजाज लहरपुरी
0: जी, बोलिए।
3: ऐसा कोई योग बता दें आसान जिससे दिल, दिमाग और लेंस स्वस्थ रहे।
0: जी
2: देखिए, दिल दिमाग स्वस्थ तभी रहेगा जब हम पूर्ण योग करेंगे, जिसमें हमारा आहार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और प्राणायाम। यदि आप रेगुलर प्राणायाम करते हैं और अपने आप को हाइड्रेटेड रखते हैं, मतलब ये है कि आपको दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है और साथ में प्रकृति के दिए हुए प्रॉपर जो प्रकृति ने दिया फल और सब्जियां, उनका सेवन आप करते हैं और आप 1/2 घंटा हंस भी लेते हैं, तभी आपका दिल और दिमाग स्वस्थ रहेगा। कोई एक योग आसन का नाम नहीं है जो आपको स्वस्थ रख सकता है, ये एक टोटल हेल्थ है जो आपको लेनी है। तो अपने आहार का भी ध्यान रखिए, खूब मौज मस्ती कीजिए और कुछ चीजें प्रभु पर छोड़ दीजिए कि यदि जीवन में कोई तकलीफ आती है तो जिसने दी वही ले लेगा। अगर हमारा ये हमारा जज्बा है तो हम दिलो दिमाग से हमेशा शांत रहेंगे।
0: जी
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लहरपुरी साहब कॉल करने के लिए। एक मैसेज है शालू जी, महापारा जी का है, लिखा है कि आई वांट टू नो योगा फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड व्हिच काइंड ऑफ फूड इज यूजफुल इन आयुर्वेदा फॉर दिस डिजीज।
2: ओके, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए सबसे पहले जनरली मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आपको जो भी डिजीज है, सबसे पहले आपको उसका ये ज्ञान होना चाहिए कि डिजीज कौन से ऑर्गन से है और वो ऑर्गन हमारे शरीर में कहाँ है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आप जनरली काग आसन और जो प्राणायाम है, जो जिनमें भी ऐसे प्राणायाम जिसमें भी हमारे गले में घर्षण होता है, हम भ्रमरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, जो हमारे गले को अफेक्ट करते हैं, दैट हेल्प्स। और रही बात खानपान की, खानपान में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप गोभी या ब्रोकली जैसी चीजें ना खाएं। धनिया जो है, वो धनिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा क्लिंजर है, उसको रात को भिगाकर सुबह उसका पानी पीजिए, और नहीं तो धनिया की चटनी भी खा सकते हैं। हरे धनिये को बहुत ज्यादा उपयोग में लाएं। उसके बाद सिंहासन बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसमें हम जीभ को बाहर निकालकर सिंह की तरह गर्जना करते हैं। बाकी जो थायराइड है, उसका सिक्रेशन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, इसीलिए हमें अपनी जो रेगुलर हमारा खान पान है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। नंबर 2, टेक इनफ अमाउंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एवरी डे।

0: जन्नत आयशा खान ने मेरठ से पूछा है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा आसन होना चाहिए।
1: शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से आसन हैं, जैसे मंडूक आसन, भुजंग आसन, मत्स्येन्द्र आसन, हल आसन, धनुरासन और भी कई सारे ट्विस्टिंग आसन हैं जिनमें हमारा पैनक्रियाज स्पेशली अफेक्ट रहे। दीज आर दी आसन
0: जी। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी,
2: दत्तारथ मैडम जी को हाथ जोड़कर नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: जी रघुविंदर जी,
2: और योग गुरु को भी हमारा सागर प्रणाम।
1: नमस्कार।
2: मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम होती है उनको कौन से आसन करने चाहिए और कौन से आसन नहीं करने चाहिए, और जो लोग बीपी से ग्रस्त हैं वो क्या उनको शीर्षासन करना चाहिए, कृपया बताने का कष्ट कीजिए।
1: देखिए, जो लोग जिन्हें हर्निया है उन्हें स्पेशली कपाल भाति नहीं करनी चाहिए और अग्निसार क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी नर्व्स अफेक्ट होती हैं, और जिनका बीपी हाई है उन्हें शीर्षासन नहीं करना चाहिए।
2: थैंक यू रघुविंदर सिंह चट्ठा की तरफ से, जय हिंद।
1: धन्यवाद। जय हिंद।
0: हेलो
3: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाह रहा हूँ।
1: नमस्कार
3: जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं, मैं रमेश कुमार बोल रहा हूँ बाराबंकी से।
1: हाँ जी
3: जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आंखों का ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें कौन सा योग करना चाहिए जिससे जो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए।
1: आपका मतलब है जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या करना चाहिए, राइट? देखिए, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उसके लिए आप नॉर्मल अनुलोम विलोम कीजिए, बिल्कुल सांस भरना, रोकना और छोड़ना। नंबर टू, आपको गर्म पानी में पैर रखने चाहिए जिससे खून का बहाव ऊपर की तरफ जाता है और ब्लड का प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है। तीसरी चीज है, अगर ब्लड का प्रेशर बहुत हाई है उसी वक्त, तो अपने सिर को भिगाएं या सिर पर गीला तौलिया रख लें, और खान पान का ध्यान रखें, स्पेशली खान पान में बहुत सा कच्चा आहार और लिक्विड्स लें।
3: ये जी, मैं खाना शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, मैं खाना शुद्ध खाता हूँ।
1: ठीक
0: है जी, पानी प्रचुर मात्रा में पीना चाहिए, ये मैम बोल रही हैं। चलिए, जैतपुर धामपुर से कवि प्रेमचंद प्रेमी जी का सवाल है शालू जी।
1: हाँ जी।
0: कि स्लिप डिस्क की स्थिति में कौन सा योगासन करना चाहिए।
1: स्लिप डिस्क, देखिए स्लिप डिस्क में वही प्रॉब्लम है जैसे साइटिका में होती है कि हमें या तो कमर में है, ये हम कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने पहले भी बताया था कि आपने सीधा आप लेट गए हैं और आपको दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री तक स्ट्रेट आप ऊपर ले जाएं और फिर नीचे ले आएं।
0: जी, कालका जी साउथ दिल्ली से दिनेश दयाल जी का कहना है मैम कि ये सूत्र नेति,
1: हाँ जी,
0: जो नाक में,
1: हाँ जी,
0: रस्सी,
1: हाँ जी,
0: डालने वाली जो क्रिया है वो कर लेते हैं, तो इन्हें जानना चाहिए कि ये मंथली या वीकली कितनी बार करना चाहिए।
1: देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है तो आप सूत्र नेति कुछ दिन, 10 से 15 दिन रेगुलर कीजिए। ये हमारी मेमोरी के लिए, आईज के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और जब आपको लगता है कि आपकी नाक, दोनों नॉस्ट्रिल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खुल गई हैं, तो आप इसे वीक में एक बार भी कर सकते हैं। 15 दिन में ज्यादा है, वीक में एक बार कीजिए, इट हेल्प्स।
0: सूरज यादव ने लिखा है बैंगलोर से कि हाउ कैन वी ओवरकम स्पीच स्टैमरिंग बाय योगा प्रैक्टिस।
1: स्पीच स्टैमरिंग के लिए देखिए कुछ सारी चीजें हैं, जैसे कि बलून फुलाना, आपको अपने मुंह से प्रेशर देकर बाहर एयर डालनी है। कुछ ऐसे ही एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हम सांसों को छोड़ते हैं, मुंह से बहुत प्रेशर से वो छोड़ते हैं, उससे स्टैमरिंग में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। हमारे कुछ टेस्टेड ये हैं कि जब हम कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं स्टैमरिंग वाले जिन्हें हम जब मिर्च खिलाते हैं, मतलब उनकी नॉर्मल मिर्च से ज्यादा मिर्च खिलाते हैं, तो भी स्टैमरिंग में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है।
0: जी, तो ये जो प्रक्रिया आपने बताई मिर्च खिलाने वाली, ये प्रॉपर गाइडेंस में होनी चाहिए, घर में?
1: नहीं, घर में भी कर सकते हैं आप। हाँ जी, घर में ट्राई कर सकते हैं, इट हेल्प्स।
0: ओके। हेलो।
4: हेलो।
0: हाँ जी।
4: हाँ जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, कौन सा बोल रहे हैं बताइए।
4: मैं पानीपत से मनवाद्र बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बोलिए।
4: मैडम, मेरा जो कमर में दर्द रहता है, मतलब ये इसके लिए कौन सा ये करना चाहिए वैसे?
1: कमर में दर्द कमर में है या पैरों में भी जा रहा है?
4: कमर में ही खाली दर्द होता है, उठने बैठता हूँ तो उठता हूँ तो टेढ़ा हो जाता है, और उठता हूँ तो बैठने में थोड़ी मुश्किल हो जाता है।

0: मुक्ति के लिए कौन सा योग करना चाहिए?
1: देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिप्रेशन और मेंटल इलनेस के लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका प्राणायाम और आपका अनुलोम विलोम। प्राणायाम से जब आपकी सांस आपकी दोनों नाड़ियां खुलती हैं, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, तो आपको बहुत ही ज्यादा अपनी मेंटली यू फील बेटर, क्योंकि डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत लोगों को तो रिजल्ट होता है एसिडिटी का। आई एम नॉट श्योर आपके केस में क्या है, लेकिन प्राणायाम सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज है, आप अपने आहार को इतना अच्छा रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मैं इसीलिए बात बार बार कह रही हूं क्योंकि रोज हम पेशेंट्स को ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि हमें रूट कॉज को पकड़ना है, हमें फाइनल बीमारी को नहीं पकड़ना है। तो अल्टीमेटली एक तो नाक में तेल डालें, दिन में 2 से 3 बार 2-2 बूंद तेल डालें। नंबर 2, अपने खूब सारा पानी पिएं। नंबर 3, अनुलोम विलोम करें। नंबर 4, कोशिश कीजिए प्रकृति में रहें, पार्क में जाएं, पहाड़ों पर जाएं, प्रकृति में बैठें, अपने आप को प्रकृति से एक्सपोज करें।
0: तो शालू जी, ये बहुत जरूरी है, आज के जो तनाव से भरी जिंदगी है, डिप्रेशन और मेंटल बीमारियों का बहुत सारे लोग जो है शिकार हो रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारा जो यूथ तबका है, जो उनमें एग्जामिनेशंस का डर रहता है, फियर रहता है आगे चल के फ्यूचर में क्या होगा, नौकरी को लेकर बहुत सारी इस तरह की मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में योग जो है उनका बहुत बड़ा एक मददगार साबित होता है।
1: हाँ जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है राम नाम, जो हम योग में भूल जाते हैं, वही है कि ट्राई टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं है। जब हम एक्सेप्ट करना भी सीख लेते हैं तो भी हम मेंटल डिप्रेशन और एंग्जाइटी से दूर चले जाते हैं।
0: जी, तो अभी भी बहुत से कॉल्स आ रही हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सभी के घूम फिर के वही सवाल हैं जो आप ऑलरेडी आंसर दे चुकी हैं। बीपी को लेकर है, गुर्दों को लेकर है, किडनी, एक सवाल था कि गुर्दों में किडनी में दर्द रहता है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: किडनी में दर्द के लिए देखिए, वैसे किडनी का दर्द, किडनी में एज सच ऐसे दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर आपको किडनी में दर्द लगता है तो आप ये कर सकते हैं कि 100 ग्राम के करीबन आप अदरक को कूट लें, उसका पानी गर्म कर लें और उसमें कपड़ा भिगोकर अपनी किडनीज पर रखें, तो इसको हम बोलते हैं जिंजर पैक। इससे किडनी में अगर कोई बीमारी भी है तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है, प्लस पानी बहुत ज्यादा पिए।
0: जी, तो जैसे कि शालू जी ने बताया कि योग क्या है, योग है एक तरह से अपने आप का जीवन का संतुलन।
1: हाँ जी,
0: जीवन का संतुलन। हाँ जी, कि हम अपने आप को नियम में बांधे, सुबह उठने का नियम, शौच जाने का नियम, ब्रेकफास्ट का नियम, भोजन का नियम और रात को सही समय पर सोने का एक नियम है। और आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अगर जो कुछ हमारे बस में नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दें।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज,
0: सबसे बड़ी चीज। और आपने ये भी कहा कि आधा घंटा कम से कम हंस लें, खुलकर हंस लें, एक स्वाभाविक सी जो हंसी है।
1: हाँ जी,
0: तो इसी बात पर शालू जी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। आप, मैंने जैसे कहा कि बिना सांस लिए आप बोलती रहीं, हमारे जो लिसनर्स के सवाल थे उनके जवाब देती रहीं। थैंक यू सो मच। योगाचार्य डॉक्टर शालू गुप्ता हमारी एक्सपर्ट थी और उन्हीं के साथ चलिए एक संकल्प लेते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे पर कि और कुछ ना सही तो आधा घंटा हंस तो हम सकते ही है ना।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर 9:00 बजे।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री वांस ने कहा है कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ होने वाली एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला

के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया गया है। तीन मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 14 जुलाई को इंग्लैंड के एस्बेस्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो दोस्तों, लम्हे पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। टुडे विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ कम्युनिटी। अपना स्वयं का समुदाय कैसे बनाएं? कहां से शुरू करें? कम्युनिटी एक समुदाय केंद्रित इवेंट प्लेटफॉर्म है जो आपके समुदाय को बढ़ाना, कार्यक्रमों का आयोजन करने और संचार को बढ़ावा देने के लिए है। सरल शब्दों में समुदाय एक ऐसा समूह है जो विभिन्न स्थानों, अनुभवों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को एक साथ लाता है तथा वे या तो किसी विशिष्ट साझा समस्या की दिशा में काम करते हैं या किसी साझा उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करते हैं। हालांकि इस परिभाषा में एक कमी है, यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि एक ही चुनौती के लिए कितने अलग अलग समूह या सभाएं होनी चाहिए। आदर्श रूप से आपको उसी चुनौती के लिए एक नया समुदाय तभी विकसित करना चाहिए जब ऐसे मौजूद समुदाय पहुंच से बाहर है। कई क्षेत्रीय समुदाय इस तरह से बनाए गए थे जो अभी भी आभासी उपकरणों के कारण सहयोग देखते हैं। इस प्रकार भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सीखने का अनुभव और विकास सक्षम करते हैं। समुदाय बनाने का विचार बहुत ज्यादा काम जैसा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। यदि आप पहले से योजना बनाते हैं, अपना समय लगाते हैं, जो करते हैं उसमें निरंतरता बनाए रखते हैं और कुछ बुनियादी चरण का पालन करते हैं तो आप आसानी से अपना समुदाय शुरू कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पर काम करें। अपने समुदाय के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट पहचान निर्दिष्ट करें। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपका समुदाय किस बारे में होगा, लेकिन सही लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको संक्षेप में परिभाषित करना चाहिए कि विषय, मुख्य विषय क्या है और उन्हें एक साथ क्या लाएगा। लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि आपके समुदाय से क्या अपेक्षा करनी है। समान लक्ष्यों वाले सदस्यों को इकट्ठा करना महत्वपूर्ण है ताकि वे अधिक सहज महसूस करें और समुदाय के साथ जुड़े। इस तरह वे शामिल होने के लिए अधिक उत्सुक होंगे, जो समुदाय के बढ़ने और टिके रहने के लिए आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पशु प्रेमियों या कला प्रेमियों के लिए एक समुदाय बना सकते हैं। यदि आप एक आउटडोर व्यक्ति हैं, तो आप गतिविधियों के लिए प्राकृतिक के प्रति उत्साह लोगों को एक साथ ला सकते हैं। शौक और मनोरंजन के अलावा आप व्यवसायों के बारे में कुछ बना सकते हैं ताकि लोग विशिष्ट विषय पर खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस ये सुनिश्चित करें कि गतिविधियां और विषय समुदाय की पहचान से मेल खाते हैं। उन मुख्य गतिविधियों की पहचान करें जिन्हें आप समुदाय के साथ आयोजित करना चाहते हैं। समुदाय नेटवर्किंग और आत्म सुधार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस मामले में गतिविधियों का आयोजन और आयोजन करना समुदाय प्रबंधन के सबसे बुनियादी हिस्से हैं। जब आप योजना बना रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे समुदाय के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त है। क्या यह एक बड़ा सम्मेलन है या एक

छोटा मीटअप, क्या ये साप्ताहिक सभाएं हैं या मासिक कार्यक्रम? क्या आपको उन्हें ऑनलाइन होस्ट करना चाहिए या भौतिक कार्यक्रम आपकी भीड़ के लिए बेहतर है? आपके समुदाय की जरूरतों को जानें और उसके अनुसार कार्य करें, ताकि आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सके और उन्हें समुदाय का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित कर सके। ऐसी प्लेटफॉर्म चुनें जिसमें आपकी नियोजित गतिविधियों के लिए सभी उपकरण मौजूद है, ताकि आपको बाहरी सेवाओं की आवश्यकता न पड़े। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। जब समुदाय प्रबंधन की बात आती है तो आपके द्वारा चुने गए प्लेटफॉर्म गेम चेंजर होता है। आपके पास सभी आवश्यक उपकरण होने से आपका समय बचेगा, आप हमेशा अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और आपकी संगठन प्रक्रिया आसान हो जाएंगी। आपके समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से कुछ घोषणा उपकरण और संचार चैनल है। यदि आप सदस्यों के साथ स्थिर और सुचार संचार बनाए नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने समुदाय की अखंडता को बनाए नहीं रख सकते हैं। सारांश और सामुदायिक समाचार के लिए ईमेल, आपके सदस्यों के बीच आंतरिक व्यक्तिगत संचार के लिए डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, तथा लोगों को बातचीत में शामिल करने के लिए आप जूम कॉल्स भी ले सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं, अगर फिजिकली मिलना आपके लिए अगर इतना आसान नहीं होता है तो। अगर लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है तो वो किसी चीजों में दिलचस्पी नहीं ले सकते हैं। अपने सदस्यों को हमेशा अपडेट रखें, उनसे बातचीत करें और उन्हें खबरों के बारे में बताएं। लोगों को एकत्रित करके परस्पर संवाद को प्रोत्साहित करें। एक सक्रिय समुदाय ही लोगों को एक साथ जोड़ता है, जैसे कि पहले बताए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोगों को लगे कि वे भीड़ का हिस्सा है, तो अपने समुदाय के लिए कार्यक्रम आयोजित करना आपकी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। जब लोग एक साथ महत्वपूर्ण समय बिताते हैं तो वो आसानी से जुड़ पाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लोगों को एक साथ लाना एक सामुदायिक नेता के रूप में आपके मुख्य लक्ष्यों में से एक होना चाहिए। अगर आपका सामुदायिक प्लेटफॉर्म आपको इवेंट शेड्यूल, RSVP, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ईमेल अपडेट और रिमाइंडर, चित्र अपलोड और बहुत कुछ जैसे सही संगठनात्मक उपकरण प्रदान कर सकता है, तो भौतिक या वर्चुअल इवेंट आयोजित करना कभी भी मुश्किल नहीं होता है। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की तुलना देखें दोस्तों, जो भी हो, इफ यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आराम से कीजिए। इस बारे में तनाव न ले कि ये कैसा होगा। समुदाय बनाना जरूरी नहीं है कि गंभीर और जटिल हो। ये नए लोगों से मिलने और अच्छा समय बिताने के लिए एक आकस्मिक मंच हो सकता है। आपको बहुत अधिक सोचने या योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय ले, प्रेरणा के लिए अन्य समुदायों को ब्राउज करें और प्रवाह के साथ चले। गो विद द ट्रेंड। दोस्तों, आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है spice.lamhe.vanilla। This program is sponsored and produced by Adventist Media Center.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हाय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं एक बार फिर साइमा को और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम अल्फा जैन। और आज है क्विज टाइम, रेनबो क्विज। और क्या कुछ है क्विज में खास, फिलहाल हमारे दोस्त ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई किस तरह से आज हम इस प्रोग्राम में धमाल मचाने वाले हैं, सवालों के जवाब देने वाले हैं और क्या कुछ खास करने वाले हैं। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है आकाशवाणी रेनबो पर और खूबसूरत गानों का सफर लगातार बना रहेगा दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना रेनबो जीनियस अल्फा जैन और आपके जो कहते हैं ना कि जब हम बातें करते हैं एक साथ मिलकर के और सवाल और जवाब जब होते हैं और उनसे जब बहुत सारी बातें निकल के आती हैं तो सीरियसली बहुत मज़ा आता है। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। रेनबो जीनियस आज आप बन सकते हैं, हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है इस प्रोग्राम में खास। फिलहाल आज है फादर्स डे और आज है इंटरनेशनल योगा डे और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि सब चाहते हैं भाई सेहत से जुड़ी बातें हों, कुछ ख़ास हो और क्या ख़ास हो सकता है। बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफ़र लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक। और कहते हैं ना जो साउंड ट्रैक्स हैं

प्यारे प्यारे वो लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बने रहते हैं, आपका साथ निभाते रहते हैं और इसी तरह मजे हम करते रहते हैं साथ में मिलके। फिलहाल बातें होती रहेंगी, एक और प्यारा सा साउंड ट्रैक आपके लिए।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपका अपना रेनबो जीनियस और अल्फा जैन चल रहा है इस वक्त में और इसके साथ साथ रेनबो जीनियस बनने के लिए देखते हैं आज हमारे साथ कौन है और कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लगता है शायद लाइन ड्रॉप हो गई और फिर जुड़ेंगे, फिर बात करेंगे, देखते हैं कौन है हमारे साथ में। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, खूबसूरत गानों का सफर चलता रहेगा और लगातार कहते हैं ना कि जब बातों का सिलसिला बनता है आपके साथ मिलते हैं बैठते हैं।

बात करते हैं। और जब कहते हैं ना कि जब साथ में मिल बैठ के बातें होती हैं, सवाल जवाब होते हैं, और खासकर जब वक्त बीतता है साथ में, तो सच में मजा दुगना हो जाता है। फिलहाल इसी तरह लगातार बातें होती रहेंगी। खूबसूरत गानों का सफर भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: है प्रोग्राम रेनबो जीनियस अल्फाजान, मैं हूँ सायमा आपके साथ और देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पर। हेलो हेलो,
1: हेलो हेलो,
0: आप कौन?
1: हाँ
0: आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: जी,
0: आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनस है।
0: अच्छा, आपने हमें कॉल किया है अपने सवाल के जवाब देने के लिए, तो मतलब मेरे सवाल के जवाब देने के लिए। तो मैं आपसे सवाल बिना देरी करे पूछना चाहूंगी। अच्छा ये बताइए, हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है?
1: नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट तो आम होना चाहिए
0: जी बिल्कुल, आम होता है। अच्छा,
1: जी।
0: हमारा अगर हम बात करें राष्ट्रीय गान किसने लिखा है?
1: राष्ट्रगान,
0: जी
1: राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जी बिल्कुल सही, राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मेरा तीसरा सवाल, मछली किसकी मदद से सांस लेती है?
1: मछली किस चीज की मदद से सांस लेती है?
0: जी
1: मुझे हिंदी में तो नहीं पता, बट इंग्लिश में गिल्स कहते हैं शायद।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, मछली गल फड़ों की वजह से सांस लेती है और इसे इंग्लिश में गिल्स कहते हैं। अच्छा, आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरा चौथा सवाल,
1: किस चीज को?
0: आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
1: आमले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आमले को इंग्लिश में तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं।
0: देखिए आप ना सीरियसली, चलिए कोई बात नहीं, रेनबो जीनियस बनते बनते आप रह गए, बट मैं आपसे पूरे 5 सवाल जरूर पूछूंगी, आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसे इंडियन गूजबेरी कहते हैं। अच्छा आज,
1: ओके,
0: जी आज 21 जून है, और कौन सा दिवस आज मनाया जा रहा है?
1: 21 जून है और आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? वैसे आज फादर्स डे है,
0: बिल्कुल ठीक,
1: ये तो मुझे पता है, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ और है तो मेरी नॉलेज में नहीं है।
0: आज है इंटरनेशनल योगा डे।
1: इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, थैंक
0: थैंक यू सो मच अनस, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमारे सवालों के हमें जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच,
1: यू।
0: बाय, टेक केयर, बाय।
1: ओके, बाय बाय।
0: इसी तरह आपसे बातें होती रहेंगी लगातार, कहते हैं ना कि बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा और खूबसूरत गानों का सफर भी आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
7: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
6: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
7: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
6: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
8: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
5: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
4: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
5: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: हे, तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
6: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
5: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
6: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
5: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: ब्रेक के बाद साइमा फिर है आपके साथ और इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना रेनबो जीनियस। और क्या कुछ है खास, फिलहाल प्यारे प्यारे साउंड ट्रैक्स भी हैं हमारे साथ।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन रेडमो जीनियस और मैं हूँ सैम आपके साथ। और देखते हैं अभी फ़ोन पर कौन है हमारे साथ, कौन जुड़े हैं हमसे और कौन हमसे बात करने वाले हैं। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक फ़ोन लाइन शायद ड्रॉप हो गई। और इसी तरह बातें होती रहेंगी, कोशिश होती रहेगी कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौन हमारे साथ बात कर रहे हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, जब एक साथ मिलके बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारी मौज मस्ती की जाती है, तो फिर कहने ही क्या। और यहाँ पे वक्त की कमी भी है और खूबसूरत गानों का सफर भी लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जैन, रेनबो को इस चल रहा है और देखते हैं अभी हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आई थिंक कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है आज। कहते हैं ना कि कभी ना कभी कुछ तो ऐसा ज़रूर हो जाता है जो कहीं ना कहीं आपको परेशानी के सबब में डाल जाता है। फिलहाल कोई बात नहीं, कभी कहते हैं ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा भी होता है कभी बुरा भी होता है। जो हो जैसा हो बी पॉजिटिव। फिलहाल इसी तरह बातें होती रहेंगी, अब वक्त की कमी भी है हमारे पास, लेकिन कोशिश लगातार करते रहेंगे कि हम किसी के साथ जुड़ पाएं, किसी से बात कर पाएं और खूबसूरत गानों का सफर लगातार आकाशवाणी रेनबो पर बना रहेगा दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो जीनियस और देखते हैं कौन है आखिरी मेहमान हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: आप कौन?
1: अभिषेक।
0: हाय अभिषेक, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा अभिषेक, आप हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं?
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है?
1: नेशनल एनिमल टाइगर।
0: वेरी गुड। हमारा नेशनल गेम कौन सा है?
1: नेशनल गेम हॉकी।
0: जी। हमारे कहा जाए जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उसकी लैंग्वेज में www. का मतलब क्या होता है?
1: ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है मेरे पास।
0: चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब। जी कोई बात नहीं, आपने तीन जो सवाल हैं उनके जवाब तो दिए हैं, और दो सवाल और पूछ लेती हूँ। हमारे जो अशोक चक्र है, हमारे फ्लैग में जो अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियां होती हैं? उसमें 24 जो तीलियां होती हैं, 24 तीलियां हमारे अशोक चक्र में होती हैं। फिलहाल एक लास्ट और सवाल कि हमारे देश की राजधानी का नाम क्या है?
1: राजधानी का नाम है न्यू दिल्ली।
0: जी बिल्कुल ठीक। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना वक्त देने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच अभिषेक।
1: थैंक यू,
0: बाय
1: बाय बाय बाय।
0: कहते हैं ना कि जाते जाते जो मौका लगे उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी कोशिश यही थी कि हम जितने लोगों से बात कर सकें और किसी तरीके से मुलाकात भी कर सकें तो हो जाए। फिलहाल बातों का सिलसिला लगातार चलता रहता है और प्रोग्राम्स का सिलसिला भी लगातार चलता रहता है, लेकिन वक्त कहीं ना कहीं थमता ज़रूर है हर चीज़ के लिए। और मेरा जो प्रोग्राम है ना उसका भी कहते हैं ना वक्त धीरे धीरे धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है और कह रहा है कि साइमा अब आपको जाना भी है। वादा करते जाइए इस वादे के साथ कि अगली बार फिर आएंगे एक नए प्रोग्राम को नए अंदाज में लेकर के। और इसी तरह बने रहिए आप आकाशवाणी रेनबो के साथ। बातें, मुलाकातें, सिलसिला और गुफ्तगू जब कहते हैं ना कि साथ में बैठ के की जाती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं और वक्त का पता नहीं चलता, तो सच में लगता है कि हम अपनों के साथ हैं। हम बहुत कहते हैं ना कि अपनापन जो महसूस होता है, और ख़ासकर यहाँ आकर जब आप लोगों से मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है, और आप हर प्रोग्राम का ऐसी ही शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि देखिए अब अगला प्रोग्राम जो है उसका भी तो आप इंतज़ार करें ना, सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में आपकी अपनी सिटी के बारे में क्या कुछ है ख़ास वो आपको पता चलेगा ठीक 5 बजे। फिलहाल अब साइमा को दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल और बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर। बाय एंड टेक केयर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। गुड इवनिंग, 5 बज चुके हैं जी, और बस सिटी लाइट्स का जो ये सफर है वो मेरे साथ शुरू हो चुका है। मेरा नाम है निशा, और एक बात आप मानेंगे ना कि हम लोग जिंदगी में कितनी तैयारियां करते रहते हैं ना, मतलब ये नहीं सोचते हैं कि भाई आज के दिन कोई ऐसी चीज भी तो हो सकती है ना जो हमारे प्लान में कहीं ना हो। अब सोचो अपने प्लान में गिरना कौन डालता है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी नहीं डाला था। लेकिन आज ये इंटरनेशनल योगा डे के मूड में मैं घर से निकली हूँ, व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है, और सोचा है कि भाई बस चलते जाओ, और एकदम से पता नहीं यार कहाँ से पांव स्लिप हुआ और गिर गई। और 4-5 सेकंड लगे मुझे ये सोचने में कि हुआ क्या है, मतलब ना किसी ने मुझे पुश किया है, ना मैंने हील्स पहनी है, मतलब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन। बस लाइफ ना ऐसी है, हम चाहे कितनी भी तैयारियां कर ले, ये ना हमेशा हमें कुछ ना कुछ एक्साइटिंग या कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड देने के लिए हमेशा तैयार रहती है ना। एंड आई थिंक यही जिंदगी नाम की रेसिपी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो हमें आने वाले, हमारे लाइफ में आने वाले टफ मोमेंट्स के लिए रेडी करता है, और बड़ा ज़रूरी है ये हमारे लिए। और वो कहते हैं ना, ऑल वेल इफ एंड्स वेल, सो आई एम परफेक्टली फाइन। स्वागत है आपका सिटी लाइट्स में, सुनते रहिए, मैं निशा हूँ आपके साथ।

सबका भला हो, सबका सही हो, इसी तरह अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के लिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए इसी तरह से हम लोग अच्छी अच्छी दुआएं करते रहेंगे। और सबसे ज्यादा तो आज दुआएं मिल रही हैं पापा लोगों को। हाँ जी, फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे आज सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। 21 जून का दिन है। यस, आज इंटरनेशनल योगा डे। सभी फादर्स ने अपने मतलब डॉटर्स एंड सन के साथ और अपनी वाइफ एंड फैमिली के साथ मिलकर जरूर सेलिब्रेट किया है, लेकिन आज संडे, आज जून महीने का जो ये तीसरा संडे है, इसके दिन फादर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो सभी पापा लोग जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी बीइंग अ बच्चा मतलब हम अपने पापा को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन नहीं जी, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है लाइफ में, है ना। वही तो है जो हमें जरूरत पड़ने पर काम की सलाह देते हैं, है ना, हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और मैं तो उनको याद करती हूँ कि उनसे 100 रुपये मांगते हैं तो 500 रुपये दे देते हैं। याद है वो पॉकेट मनी वाले दिन। तो जय, यस, इसी खास रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए, बेशक हर रोज़ यही होना चाहिए, कोई खास दिन अगर चुना गया है तो बस उन्हें आज हमें अपनी तरफ से स्पेशल फील कराना है, ठीक है, उनको खुश करना है। वो बड़े बड़े गिफ्ट से या फिर किसी बड़े इवेंट से हैप्पी नहीं होने वाले हैं। एक छोटा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए, और हाँ, अपनी अगर कोई डीप बात दिल की उनसे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पापा जी, सभी को हैप्पी फादर्स डे। ये फादर और डॉटर की स्पेशल बॉन्ड का ये जुगाना ना, इसे एंजॉय करते हैं। कहते हैं बेटियों से ज्यादा ये मोमेंट फादर्स के लिए टफ होता है।

0: लेकिन अगर अच्छे से योगा करना है, मुड़ तोड़ कर तो देखो करना ही पड़ेगा काम. इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं जी आपको. सिटी लाइट्स 102.6 एफएम. आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया गया पूरे भारतवर्ष में. मतलब इतने हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर आज सुबह योगा किया और अब शाम को भी वो इसका हिस्सा बन रहे हैं. बड़ी अच्छी बात है. मतलब है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री की वजह से ये जो इनिशिएटिव शुरू हुआ, लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान देना शुरू किया ही है, लेकिन उसके साथ साथ अकेले दिल्ली में ही 150 से ज्यादा जगहों पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में, सार्वजनिक और धार्मिक स्थानों पर भी अलग अलग आयु वर्ग के लोग और अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर योगासन किया. अपने आप में बहुत बड़ी बात है. मतलब लाल किला, कनॉट प्लेस, कर्तव्य पथ पर, या फिर DDA और NDMC और MCD के जितने भी पार्क्स थे ना, आज तो ऐसा लग रहा था जिस पार्क में मैंने योगा किया वहां पर ऐसे ग्रीन ग्रास के ऊपर किसी ने, मतलब उस घास ने एक वाइट कलर का बेड कवर ओढ़ लिया है, क्योंकि सभी ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी. तो यस, इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं. और इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय रहा स्वस्थ आयु के लिए योग. तो आप अपनी अच्छी आयु के लिए इसी तरह से योग सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं, हर दिन करते रहना है, क्योंकि मेरे गुरुजी खुद यही कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की. अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त.
2: पता का चाय, गजब का स्वाद.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी. ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.

आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM, गुड इवनिंग सिटी लाइट्स है ये, मैं निशा हूँ आपके साथ में। और एक बार अगर आपने अपनी जिंदगी में योग के साथ अपना नाता जोड़ लिया, फिर तो देखो पाना ही पाना होता है। यस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छी हेल्थ और सेहत आप पा लेते हैं। और अगर आपने स्कंदासन का नाम सुना है कभी, ये एक साइड लंज और हाफ स्क्वाट के नाम से भी ये आसन जाना जाता है। बड़ा ही पावरफुल और वर्सेटाइल योगा पोज है ये, जिससे कि जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके शरीर में बैलेंस आता है। और ये पोज पर्टिकुलरली एथलीट्स जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर जो अपनी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ और मोबिलिटी देना चाहते हैं ना, वो स्कंदासन में बहुत ज्यादा किया जाता है। और ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग

जुम्बा कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, डांस फॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है. और साथ ही साथ जिम में वर्कआउट करते हुए भी बहुत ज्यादातर लोगों को आप स्कंदासन करते हुए देखेंगे. इंस्टेंट डोज ऑफ एनर्जी आपको स्कंदासन के माध्यम से मिल जाती है. बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा और आसान पोज है अगर आप थोड़े समय तक के लिए प्रैक्टिस करेंगे. अपने दोनों पैरों पर अगर सीधे खड़े हो जाएं और पहले आप एक लेग पर, चाहे लेफ्ट या फिर राइट, राइट लेग पर अपनी बेंड होंगे तो अपनी लेफ्ट लेग आपको बिल्कुल स्ट्रेट करनी होगी. और इसी तरह अगर आप रिपीटेशन करेंगे 5 से 10 बारी खड़े होकर फिर दूसरी लेग पर बैठना, बेंड होना, तो आपको करते करते बहुत ही अच्छी हैमस्ट्रिंग में आपकी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा. और इससे आपका कोर बिल्ड होता है, आपका बैलेंस तो यस ऑफ कोर्स शरीर में आता ही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है. तो बहुत ही अच्छा और ताकतवर फील कराने वाला ये आसन है. जिसे आप करेंगे तो बस बढ़िया सेहत और एक फिटनेस आपको लगातार मिलती रहेगी. सिटी लाइट्स है ये 102.6 FM, 5:26, मैं निशा.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात

0: बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बारिश, बस यही सीक्वेंस में जो है मौसम बना रहे, कितना मजा आता है ना। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सुबह से तो बहुत ही अच्छा मौसम था दिल्ली में, आसमान में बादल छाए हुए थे, धूप नहीं निकली, तो योगा करने में ओपन एरिया में स्पेशली लोगों को कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ होगा। क्योंकि आजकल के समय में, मतलब ये जून का महीना चल रहा है और इस महीने में जो ये धूप है ना, वही लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है ना। सबसे लंबा दिन वर्ष का आज है और सबसे छोटी रात होती है। आज के दिन को जून संक्रांति भी कहा जाता है। और इस दिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें ना धरती पर एक खास तरह के एंगल में पड़ती हैं, जिसके कारण दिन जो है सबसे लंबा हो जाता है। अभी 5:37 हो चुके हैं और अभी भी मुझे स्टूडियो की खिड़की के बाहर सूर्य की किरणें जो हैं वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। यस, सनसेट धीरे धीरे ही सही लेकिन हो रहा है। और ऐसे ही मैं कहूंगी मानसून भी धीरे धीरे ही सही लेकिन हमारे जो देश की तरफ, हमारे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है ना। लेट्स बी पॉजिटिव। वैसे मौसम विभाग ने कहा है कि थोड़ा सा लेट आएगा, जैसे जून एंड तक आ जाता था मानसून, लेकिन हाँ अब जुलाई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में हो सकता है दिल्ली में दस्तक दे मॉनसून की वो बारिश। वैसे आज अच्छे बादल छाए रहे, मजा आया है ना। अभी फिलहाल बाहर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। एंजॉय करते रहिए, मैक्सिमम 40 तक गया है वैसे आज, कुछ खास नहीं, मतलब ठीक है।

102.6 FM रेनबो सिटी लाइट सुन रहे हैं आप। गुड इवनिंग, और मैं निशा हूँ आपके साथ में। दिल्ली की अगर सड़कों से आप गुजर कर जा रहे हैं तो आपने देख ही लिया होगा, बहुत जगह पे जो गुरुद्वारों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पानी पिला रहे हैं लोगों को, और उसके साथ साथ भंडारे लंगर का भी इंतजाम आज दिल्ली की सड़कों पर कई जगह पर देखने को मिला। अगर अभी फिलहाल आपको संडे इवनिंग में कहीं पर ट्रैफिक मिल रहा है तो वो आप मुझे बता दो। फिलहाल मैंने अपनी बात आपसे शेयर कर दी। नंबर इज 9868107070।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: दिल के तराने।

0: गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

ऐसी प्रीत जो है वो हमारी हमारे खिलाड़ियों के साथ लगी हुई है, गेम्स के साथ लगी हुई है, खेलों के साथ लगी हुई है. सच्ची में एक तरफ तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जहां पर लगातार हमें कोई अगर अपडेट ना मिले तो देखो मजा नहीं आता. तो फीफा वर्ल्ड कप में मैं मैचेस एंजॉय कर रही हूँ, मतलब हाँ न्यूट्रल होके, ऐसे किसी खास टीम को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मजा आ रहा है मतलब मैचेस देखने में. मेक्सिको तो फिलहाल जो है वो नॉकआउट राउंड में पहुंच गई है, काफी पहले, मतलब सबसे पहली टीम थी जो नॉकआउट में गई. उसके बाद यूएसए भी चली गई जो को होस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप को, और जर्मनी ने भी, अब आपको सुनकर अच्छा लगा होगा जो जर्मनी के फैंस होंगे, कि उसने भी नॉकआउट राउंड में अब एंट्री ले ली है. अब इसी तरह धीरे धीरे टीम्स आएंगी, फिर देखते हैं सेमीज में कौन जाता है. लेकिन फिलहाल आगे जाने की बारी से मुझे याद आया कि हमारी मेंस क्रिकेट टीम में जो अब आने वाली सीरीज हमारी टीम

हो जाएगा आपसे 1 घंटे से थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम के बाद। फिलहाल जो है टाइम 5:50 हो चुका है। मैं निशा हूँ आपके साथ, आप बने हुए हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉइंग द ग्रेट म्यूजिक।

भाई हर बच्चे को रॉकेट बनाना है, यानी कि वो डांस में अच्छा करे, म्यूजिक में अच्छा करे और एकेडमिक्स भी कहीं ना कहीं संभाल ले। तो ऐसे रॉकेट बच्चों को बनाने के लिए एजुकेशन में देखिए परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना। इसीलिए CBSE ने नोएडा के कुछ स्कूलों में पेरेंटिंग कैलेंडर जो है वो लेकर आए हैं, जिसमें बच्चों के साथ साथ अब पेरेंट्स का भी एग्जाम नहीं होगा, बस उनका एक एनालिसिस किया जाएगा। मतलब हाँ, बच्चों के लिए तो एक तरफ टीचर्स जो है रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए ये एनालिसिस किए जाएंगे कि वो घर में अपने बच्चों को कितनी अटेंशन दे रहे हैं, उनकी बातों को कितना सुन रहे हैं या फिर उनकी भावनाओं को कितना महत्व दे रहे हैं, है ना। तो इसी ईयर से ये जो पेरेंटिंग कैलेंडर है लागू कर दिया गया, जिसके अंदर रेगुलर वर्कशॉप्स दी जा रही हैं, काउंसलिंग सेशंस हैं और सपोर्ट ग्रुप्स हैं पेरेंट्स के लिए। और इसके पीछे एक सिंपल सा मकसद है कि भाई जो हमारे बच्चे हैं ना खुश रहें और ओवरऑल उनकी जो है होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ वो आगे बढ़े, है ना। इसीलिए तो हर बच्चा रॉकेट है और हमारे दिल के करीब है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का

0: है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमें पता है बहुत बहुत बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर इस वक्त के प्रोग्राम मिसेज मसाला मिक्स में आपका स्वागत है। जब हम मिलते हैं तो वो दिन अपने आप कुछ खास हो जाता है। जैसे कि आज का दिन, 21 जून का दिन, कई खास वजहों से दुनिया भर में याद किया जाता है। सबसे पहले आज है इंटरनेशनल योग दिवस, जिसे हम सुबह से नहीं शायद पिछले एक महीने से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर आप योग करते हैं तो शायद पूरे साल से सेलिब्रेट कर रहे हो। जिनकी शुरुआत आज के दिन की शुरुआत भारत की पहल पर हुई थी, और आज करोड़ों लोग योग के जरिए स्वस्थ जीवन का संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही आज विश्व संगीत दिवस यानी वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाया जा रहा है, जो संगीत की शक्ति को इतना ज्यादा हमें बताता है कि वो बिना बोले ही दिलों को जोड़ देता है। जैसे कि मिल चुके हैं आपके और हमारे दिल। और इतना ही नहीं, जून का तीसरा रविवार होने की वजह से आज फादर्स डे भी मनाया जा रहा है, जो हमारे जीवन में पिता के योगदान और उनके प्रेम को सम्मान देने का अवसर है। यानी 21 जून 2026 का दिन सेहत, म्यूजिक और रिश्तों की खूबसूरती को एक साथ सेलिब्रेट करने का दिन है। तो आइए योग से तन को, म्यूजिक से मन को और अपने पिता के सम्मान से

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी।
3: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
4: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
5: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
6: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
7: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
8: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिसेज मसाला मिक्स आकाशवाणी रेनबो पर, और आपके मैसेजेस हम लेंगे बस कुछ ही देर में।

मतलब सब बिल्कुल प्यार तो वैसा ही होना चाहिए जैसे आपके बीच और हमारे बीच में है, क्योंकि अभी तक हमने टॉपिक नहीं बताया, लेकिन आपके मैसेजेस, ओ माय गॉड, इतने सारे मैसेजेस आ गए आपके। चलिए हम शुरू कर देते हैं। टॉपिक तो हम बताते रहेंगे जनाब, टॉपिक का क्या है, हम हैं यही है, टॉपिक भी यही है, हम बता देंगे आपको, आप भी यही है, लेकिन हम आपके मैसेजेस पहले पढ़ना चाहते हैं कि आपने क्या भेज दिया बिना हमारे बताए। आरजे चांद जी को नमस्कार, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे मिलकर हम और भी अच्छे हो जाते हैं। और आज योग डे है, म्यूजिक डे है, फादर्स डे है, यकीनन हम बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। योग से तन स्वस्थ रहे, संगीत से मन खिल जाए, पिता के स्नेहिल आशीष से जीवन पथ आसान हो जाए। योग, संगीत और पिता का मान, तीनों है जीवन की पहचान, इनसे मिलता सुख और सम्मान, यही है खुशियों का वरदान। मोहम्मद सरफराज आलम जी ने, जो कि हाट दर्शना बाजार जिला अहरिया बिहार से लिखा है। सरफराज आलम जी, आप बहुत बहुत बहुत अच्छा लिखते हो, हम पहले भी आपकी बहुत तारीफ कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि एक दिन ऐसा आए जब पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे, ऐसी हमारी दिली ख्वाहिश है आपके लिए। अगला मैसेज हमें लिखा है शुभ संध्या प्रिया आरजे चांद जी, मैसेज मसाला मिक्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व म्यूजिक डे फादर्स डे की शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। हीरा मणि वर्मा जी ने दत्रेगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज किया, थैंक यू आपको। गांव शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर चांद मुखर्जी, नमस्कार, आज का टॉपिक मिस हो गया, गाने तो आपने दोनों ही अच्छे सुना दी, टॉपिक मिस नहीं हुआ जनाब, अभी हम आपको बताएंगे। आपका, आपके विचार भी तो जानने चाहिए दोस्तों कि आप क्या चाहते हो, जब आपके पास कुछ भी ना हो आप क्या बोलोगे, बस यही हम जानना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनिल शर्मा जी का, सरिता विहार से लिखते हैं कि जो चीज चैलेंज करती है वही तुम्हें चेंज भी करती है, जो शिक्षा देती है वही तुम्हें सर्वोत्तम बनाते हैं। जीवन में कोई दो शक्ति होती है जो मदद के लिए खड़ी रहती है, जो सच्चा दोस्त है पिता, वही तुम्हें काबिल बनाते हैं। हैप्पी फादर्स डे। अनिल शर्मा जी लिखते हैं, पिता कहता नहीं करता है, पिता ढाल बन खड़ा रहता है, रिश्ते तो खून के बहुतेरे देखे, पिता ख्याल संतान का रखता है। अनिल शर्मा वरिष्ठ लिखते हैं, वरिष्ठ हैं, सरिता विहार से लिखते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि अभी तक हमने मैसेज आपको बताया नहीं कि टॉपिक क्या है, और आपके मैसेजेस आने शुरू हो गए। टॉपिक हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कीजिए जनाब, आपको बस हम बताएंगे, एक ब्यूटीफुल सा ट्रैक आएगा आपके पास, उसके बाद कुछ मैसेजेस आएंगे और आपके पास, उसके बाद एक गाना आएगा और उसके बाद हम आपको टॉपिक बताएंगे, ये वादा है हमारा। तो सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, मैसेज मसाला मिक्स चल रहा है, आपके साथ है आरजे चांद और आरजे चांद मुखर्जी के साथ आप है आकाशवाणी रेनबो में, रेडियो के उस पार से, है ना, है ना। और आज के दिन अपने पापा को ये जरूर बोलिएगा कि पापा यू आर द बेस्ट पापा इन दिस वर्ल्ड।

0: दोस्तों, आपकी जन्म कब आएगी उसका रियली हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपकी चांद कहीं नहीं गई है, वो यही है आपके साथ है। बस आप सुन रही आकाशवाणी रेनबो।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: तुम्हें पता है, पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
4: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
3: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
4: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
3: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और दोस्तों आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर, जिसमें आप बहुत देर से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अपने मन से कयास लगा लगा कर मैसेजेस कर रहे हैं। और संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ुद को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सेहत के साथ योग करें, एक्सरसाइज करें। और योग दिवस के दिन आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में योग के बारे में कब और कैसे पता चला, और आप दिन में कितना समय योग को देते हैं। बस यही छोटी सी बात हम आपसे जानना चाहते हैं। 9868107070 पर आप हमें बता सकते हैं। आपके साथ है चांद मुखर्जी, और हमारे साथ मैसेज में कौन है उनके मैसेजेस हम पढ़ लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं हमारे पास। और भाई दोस्तों क्या बात है, आज हम आपको देख भी रहे हैं। आरजे चांद जी, प्रदीप सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से ऐसा लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। और आपकी दिल की आंखों से आप हमें देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप महेश बोहरा जी ने लिखा है हमें अजमेर राजस्थान से, लिखते हैं कि सुप्रीम नमस्कार और हैप्पी फादर।

डे टू यू ऑल लिसनर्स ऑफ एफएम फैमिली, एफएम रेनबो फैमिली। माँ का प्यार अक्सर खुल कर दिखाई देता है, लेकिन पिता का प्यार कई बार जिम्मेदारियों के पीछे छुप कर रह जाता है। वे कम बोलते लेकिन हमेशा परिवार के साथ खड़े रहते हैं। वे अपने संघर्षों का बखान नहीं करते, परंतु अपने परिवार को सुरक्षित और खुश रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं, ऐसा महेश जी ने लिखा है। धन्यवाद महेश जी मैसेज करने के लिए। मैडम जी नमस्कार, मैं मेरठ से संजय बोल रहा हूँ। योग दिवस और पिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस मैं इतना कहना चाहूंगी, दुनिया में पिता है तो हमारा पता है, नहीं तो हम लापता हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, लिखा है कि अगला मैसेज हमारे पास आया, लिखते हैं सॉरी हमें पता नहीं था आज इतने नखरे वाली लड़की चांद मुखर्जी आएंगी, वरना मैसेज करते ही नहीं। अरे जनाब क्यों क्यों इतना नाराज है नरेंद्र सोनी जी, ऐसा कोई नखरा कौन सी ऐसी लड़की होगी जो नहीं करती है, लेकिन यहाँ नखरे हम नहीं दिखाते, आप हमारे दोस्त हैं, दोस्तों से क्या नखरे दिखाना। अगला मैसेज हमारे पास आया है सरफराज आलम जी का, थैंक यू बोला है। थैंक यू सरफराज आप को भी कि आपने आप इतना अच्छी अपनी जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशें ही हम लोगों को अक्सर इंस्पायर करती हैं, दूसरे लोगों को भी कि वो भी जिंदगी में कुछ अच्छा करें। नमस्कार, आपको कैसे आप? मैं एकदम अच्छा हूँ। रोज मैं और मेरा परिवार आपका प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद भी आते हैं। प्रोग्राम में आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। अच्छा जी, क्या बात है, आज तो हमारी आवाज़ अभी तक ठीक हुई नहीं है। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से पूरी फैमिली कश्यप, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप जी, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, इन सब ने हमें मैसेज किया है। आप सभी को इन विशेष दिवस, अगला मैसेज हम पढ़ रहे हैं रंजीत कुमार मंडल जी का, सिकटी अररिया बिहार से, आप सभी को इन विशेष दिवसों योग दिवस, फादर्स डे और संगीत दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता नहीं था कि आज फादर्स डे है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मेरी बेटी ने मुझे चॉकलेट दिया और प्रणाम किया और कहा कि आज फादर्स डे है, तब मैं गद गद हो गया। क्या बात है रंजीत कुमार मंडल जी। और दोस्तों अगर आप भी मैसेज करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कीजिए 9868107070। चांद है आपके साथ और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि आपको अपने जीवन में योग के बारे में कब और कैसे पता चला और आप दिन में कितना समय योग को देते हैं। और ये हम आंखों से नहीं कह रहे, ये हम अपने होठों से कह रहे हैं, हम अपने होठों से आपसे पूछ रहे। आकाशवाणी रेनबो पर मिस इन मसाला मिक्स चांद के साथ।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: और दोस्तों मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं। आज हमने आपसे जानना चाहा है कि आपको अपने जीवन में योग के बारे में कब और कैसे पता चला, और आप आज के दिन में या दिन के किसी भी वक्त में कितना समय योग को देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, योग से रिश्ते भी बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि योग बढ़ाता है धैर्य, क्रोध पर नियंत्रण, संवाद यानी बातचीत में सकारात्मकता को भी बढ़ाता है। आप क्या कहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए 9868107070। पर पिता है जीवन की पहली पाठशाला, योग है आत्मा का चाव जाला, एक देता है हौसला हर मुश्किल में, दूजा भर देता है शांति हर पल में। मुझे ऐसा लगता है कि हर योग आसन हमारे शरीर के किसी न किसी ऊर्जा चक्र को हील करने में मदद करता है। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, योग शरीर को शक्ति, मन को शांति और आत्मा को नई ऊर्जा देता है। और कई सारे योग के नाम इन्होंने बताए हैं, अरुण कुमार फ्रॉम भटिंडा से इन्होंने लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कुमार जी, आपने बहुत सारी बातें बताई हमें। अगला मैसेज पे हम आ जाते हैं कि अगला मैसेज हमारे पास है, संगीत का जो आनंद आकाशवाणी से श्रवण कर मिलता है उसकी बात ही अलग है। संगीत की स्वर लहरियां कानों में मिठास घोल देती है। प्रकृति के बीच रहकर शास्त्रीय और सुगम संगीत सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। हम संगीत सुनकर ऐसा महसूस करते हैं मानो पंछी बनकर पहाड़ों पर उड़ रहे हों और नदियों में बहने का अनुभव प्राप्त हो रहा हो। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़ जी ने लिखा है, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से लिखते हैं कि हम तो दिन भर खेतों में काम करते हैं, तमाम तरह के योग अपने आप जाते हैं, अलग से कोई योगासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भेरूलाल जी ऐसा लिखते हैं। भेरूलाल जी सही की बात कह रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में अपने काम को ही अच्छे से करें, बहुत सारे काम ही हमारे पास ऐसे हैं जो योग से कम नहीं होते, लेकिन स्पेशली अगर हम सिर्फ 5 मिनट ध्यान करें ना दोस्तों, ध्यान एक अलग तरह की ऊर्जा हमें देती है, खुद को स्वयं से पहचानने की हमें बताती है, शक्ति देती है। आपको पता है दोस्तों, पहला जो है योग संस्कृत के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या एक करना, यानी ये चीज़ों को जोड़ता है, हमको हमसे जोड़ देता है। और पहला योग दिवस तो आप जानते ही हैं, 2015 से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत कर दी, पूरी

या को ये खूबसूरत बात दे दी। और अगला मैसेज हमारे पास नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से लिखते हैं, गुड इवनिंग शुभ संध्या चांद मुखर्जी मैडम, हमने तो बचपन से ही योग जब से होश संभाला है क्योंकि हम गुरुकुल में थे तभी से योग करने की आदत है। क्या बात है, यानी आपकी नींव में ही योग है ये। लेकिन सब लोगों को ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर आपके पास हैं ऐसे आसपास लोग तो उनको ज़रूर जागृत करिए और उनको बताइए कि योग का कितना महत्व है। गुड इवनिंग, माई नेम इज़ आरिफ रबानी फ्रॉम ज़िला हापुड़, हैप्पी फादर्स डे। मुझ पता चला था जब मैं मोटा होने लगा था, मैंने सोचा अगर ऐसे ही रहा तो गोलगप्पा बन जाऊंगा। मैंने फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, तब जाकर फिर से फिट हो गया हूँ। बिल्कुल अच्छा किया आरिफ जी, आपने सही समय पर आपने शुरुआत कर दी। और योग दोस्तों, पता है क्या होता है, एक्सरसाइज एक अलग चीज़ होती है, जिम भी हम करते हैं, और योग दो चीज़ें इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाती है क्योंकि योग जब हम करते हैं वो हमारे मन की शक्ति को, तन की शक्ति को ही नहीं, मन की शक्ति को भी बराबर बढ़ाता है। और आपको बता दें, पतंजलि जो महर्षि पतंजलि थे उनको योग का जनक कहा जाता है। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। क्या बात है, इतनी सारी चीज़ें हमें तब पता चली जब हमने सोचा आपसे योग पर बातें करेंगे। मैं योग नहीं सैर व्यायाम करके 70 वर्ष में खुद को स्वस्थ रखता हूँ। वरिष्ठ नागरिक है हमारे साथ अनिल शर्मा जी ने फिर से मैसेज किया सरिता विहार से, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और हम सबकी ऊर्जा में वृद्धि करते रहिए अपनी बातों से। काफ़ी देर से हाजिर हुए हैं जी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराह, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देर से जुड़े लेकिन जुड़ तो गए, लेकिन अगर आप आज के टॉपिक पे बात करते तो हमें और खुशी होती। अगला मैसेज हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा ट्रैक आपको सुनाएंगे, शायद आपके कानों से ये ट्रैक कभी ही गुजरा हो। सिर्फ आकाशवाणी

0: दोस्तों किसी चीज में लगन लग जाए तभी वो काम आपका पूरा हो सकता है। रामशंकर जी की खूबसूरत आवाज में ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुना सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दोस्तों आज आकाशवाणी रेनबो पर मैसेज मसाला मिक्स में हमने आपसे जानना चाहा है कि आपको अपने जीवन के योग के बारे में कैसे और कब पता चला, और आप दिन में कितना समय योग को देते हैं। आज 190 से अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। योग की परंपरा हमारे देश भारत की है जो लगभग 5000 साल पुरानी मानी जाती है। जानते हैं दोस्तों 21 जून को ही योग दिवस के लिए क्यों चुना गया है? आपको ये सुबह से बताया जा रहा है तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये साल का सबसे लंबा दिन समर सॉलिटाइज होता है। और योग का मतलब होता है जुड़ना प्रकृति से, खुद से और सकारात्मक सोच से। अब अगले मैसेज पे आ जाते हैं जो हमें भेजा है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो मैसेज मसाला मिक्स, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे की शुभ और हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम लाजवाब चल रहा है, हमारी भी अटेंडेंस लगा दीजिए। किशन वंजानी और नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमें याद रखने के लिए और मैसेज करने के लिए। जान जी, हम तो बचपन से योग कर रहे हैं और 50+ होने पर योग कर रहे हैं जी। हम तो देखने में लगते ही नहीं कि हम 50+ के हैं, क्या बात है। प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से उन्होंने लिखा है, उन्होंने पहले भी मैसेज किया था हमें। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से रोज मैसेज करते हैं हमें, लिखते हैं कि हमारी ओर से आपको और FM परिवार को योग पिता और संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम सुन रहे हैं मैसेज मसाला, योग करो, योग रहो निरोग, क्या बात है, योग अपनाओ स्वस्थ हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। राजकुमार के संतानी अंकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं कि गुड इवनिंग जी, आप कैसे हो जी? कार्यक्रम गीत संगीत आपकी आवाज में मधुर है जी। हैप्पी फादर्स डे जी, योगा म्यूजिक डे जी भी, थैंक यू जी। अगला मैसेज जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, आई यूज टू डू योगा फॉर एन आवर एंड इट शेप्ड माई बॉडी एंड माइंड वेरी वेल, बट नाइस आई हैव स्टॉप्ड योगा, माई वेट हैव गॉन डबल, सो आई वुड से इफ समवन स्टार्ट वन वंस मस्ट कंटिन्यू नेवर स्टॉप। बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई चीज़ वही लगी लगन लगी लगी लगी लगन, अगर आपने कोई चीज़ शुरू की और उसके बाद उसको बीच में स्टॉप कर दिया या ख़त्म कर दिया, जैसे अगर आप खाना ही बना रहे हैं मान लीजिए, अगर आपने उसको बीच में बंद कर दिया तो खाना पक नहीं सकता, वो बनेगा ही नहीं अच्छा गाना। तो खाना गाना नहीं, खाना एक्चुअली, थोड़ी सी गले में हमें दिक्कत है। महेश बोरा लिखते हैं, अजमेर राजस्थान से, कामकाजी हूँ इसलिए योग करने के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ, लेकिन मुझे योग का पता TV के जरिए चला, योग क्रियाएं देखकर जी। बहुत अच्छी बात है, कहीं से भी आपको पता चला, लेकिन आपको पता चला, आप कर नहीं पाते वो बात अलग है, लेकिन दिल में तो है ना।

कहीं जो बात दिल में होती है वो कहीं ना कहीं हम कभी ना कभी शुरू कर ही देते हैं। योग के बारे में सबसे पहले घर में रखी किताब से पता चला, उसके बाद टीवी में देखकर पता चला था। प्रवीण चौहान जी लिखते हैं खरगोन मध्य प्रदेश से। और अगला मैसेज हमारे पास विजय कुमार जी का आया दिल्ली से। हम अच्छे हैं, आपने हमारे बारे में पूछा। फादर्स डे और म्यूजिक डे और योगा डे की शुभकामनाएं दी हैं। और लिखते हैं कि शुरू में स्कूल में पता चला था इन्हें योग के बारे में। एक्सरसाइज तो रोज़ 1 घंटे मॉर्निंग इवनिंग में करते हैं, कुछ आसन भी होते हैं। थैंक यू, आप सदा खुश रहें। आप भी बहुत खुश रहें। और अगला मैसेज भी जल्दी से हम आ जाते हैं। और बाप रे, बहुत सारे मैसेज रखे हुए लेकिन हम सिर्फ एक मैसेज ले पाते हैं, ले पाएंगे। मुझे योग की जानकारी सोशल मीडिया से मिली कुछ दिन पहले, तो मैं योग कर रहा था लेकिन अभी मॉर्निंग ड्यूटी जाने पर योग का सिलसिला छूट सा गया। रंजीत कुमार मंडल सिकटी अररिया बिहार से ऐसा लिखते हैं। और दोस्तों मैसेजेस तो और भी बहुत सारे हैं हमारे पास, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए हम आपसे आज के लिए इजाजत चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि योग का टाइम नहीं मिलता, योग का टाइम नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। एक होता है आसन शवासन, जिसमें आपको बिल्कुल लेट जाना होता है, बस आंखें बंद कीजिए और दुनिया की सारी परेशानियां सब कुछ भूल जाइए, भूल जाइए सब कुछ, जो भी परेशानियां हैं, और वो भी आपको एक बहुत अच्छा सुकून देगा। तो बस 1 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए चांद आपके साथ फिर होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, और भूल जाइएगा जो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघजी कर रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दोनागिरी संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का

0: कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। नीट यूजी की पुनः परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई। परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित हुई। इसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ऑकलैंड में फाइनल में आज भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। उधर दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली, कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: आए हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: She's crazy like a fool.

0: क्या है बताई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28

रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: और दोस्तों आकाशवाणी रेनबो पर, आकाशवाणी रेनबो पर हाजिर है हम लेकर के प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। और म्यूजिक डे पर यानी आज जो हमारे पास दिन है उसको खास ख्याल रखते हुए एक बेहतरीन प्रोग्राम बेहतरीन म्यूजिक के साथ, म्यूजिक टाइम में चांद है आपके साथ और आप है ना हमारे साथ, तो रेडी

0: yes, yes. 세력의
1: Yeah. एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: और FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्त।

से अगर आपके दिल के तार किसी एक को देख के बज रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दिल के तार हर किसी को देख के बज रहे हैं, हर किसी को देख के, तो उन तारों के चेकअप की जरूरत है।

दोस्तों, भले ही आज आशा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज से ऐसा महसूस होता है जैसे वो हम सबके साथ हो, हम सबके बीच है ना। लेकिन फिलहाल जो आवाजें आपके पास आ रही हैं वो है अलका याग्निक जी की और सोनू निगम जी की।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों, दिल की आरजू चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप रेडियो सुनते हैं, रेडियो के बंदे हैं, रेडियो की दुनिया को जानते हैं, तो वहाँ पे वक्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी वक्त के पाबंद ज़रूर होंगे, और वक्त हमें और इजाज़त नहीं देता कि हम आपको अपने साथ और लेकर चलें। लेकिन चलते चलते एक बात कहेंगे कि आज की शाम हमारे साथ आपकी कैसी रही, ज़रूर लिख के बताएगा। आपके ख़त मिलते हैं, आपकी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों, ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, इसलिए इसमें आपने जो गाने भेजे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मुलाकात होगी आपके चांद की फिर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तो एक बात कहते जा रहे हैं, अपनी स्टाइल में रहिए दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे, जो किसी को आपकी वजह से परेशानी ना हो वो कीजिए। तो क्या अब आपका चांद जाए? बाय जी। जाने की आवाज ही हमारी,
1: ये राकेश का मतलब समझ में नहीं आ रहा। तेरे घर का पता है यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया।
2: तो कटिंग आना है।
1: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ।

एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नाखों में सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रहे। दिल से दिल तक के सफर में मैं नविता हूँ आपके साथ।

101.6 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में, क्योंकि आपकी याद आती रही।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। कौन कहे ये प्रेम हृदय की बहुत बड़ी उलझन है, जो अलभ जो दूर उसी को अधिक चाहता मन है। बंदिशें रोकती नहीं हैं, आगे बढ़ने के लिए कहती हैं।

मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जी हाँ, बंदिशें रोक नहीं पाती, बल्कि हमेशा कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहती हैं, है ना। वैसे मोहब्बत में दिलवाले रुकते हुए कहाँ है, और रुकना भी नहीं चाहिए। मोहब्बत से तो दुनिया कायम है, बस मोहब्बत के रंग अपने अपने हैं।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वहां जल्द आते हैं।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं रविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नाग में सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रहे।

कोई एहसास दिल में मोहब्बत बन के रहता है, धड़कनों से बात करता है। समझ ले धड़कने धड़कनों की जुबान, तो दो दिलों में पलता है। दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नवदा के साथ।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। NEET UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर

रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी कर रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लालरेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ
0: ऊपर,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिकगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल

वो पूछ लेते बस मजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा, पर इतना आसान भी कहाँ होता है, दिल को कुछ खबर भी तो हो।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी।

0: दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कुछ न कुछ बोलते रहो हमसे, चुप रहोगे तो लोग सुन लेंगे। ऐसी ही है मोहब्बत की जुबान, आंखों से जाहिर होती है, होठ खामोश हों तो धड़कनें शोर करती हैं।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
9: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने

0: स्टार्ट किया नहीं है।
1: ठीक है,
0: तो बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एसेट कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

0: लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को

आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त हुआ है कार्यक्रम भुलाए ना बने का। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जिन्हें हम कभी भुला नहीं पाएंगे, और वो है ही नहीं इस लायक कि उन्हें भूल जाएं, तो क्यों ना आज फिर से आपको याद दिला दें कुछ ऐसे ही बॉलीवुड के मधुर गीत जिन्हें हम कभी नहीं भूलना चाहते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर

0: रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने सहयोग लिया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त रात के 3:05 हुए हैं और वक्त है हमारे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ बनी हूँ दीक्षा, आपकी दोस्त और होस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे नॉन स्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक। तो आइए शुरुआत करते हैं फिल्म राजनीति से ये गीत।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है।
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं

0: बातें कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्र

क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपनाने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वन कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारे जाने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी रेनबो। इस वक्त प्रातः के 4:05 हुए हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सारे कामा का, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप मॉर्निंग मूड सॉन्ग्स। जी हाँ, शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म दिल तो पागल है से।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की।

0: ही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
7: आज की रात मजा,
6: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
8: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
5: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसकी समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्ध पोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूरनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले सहयोगियों, वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल

बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। सीबीएसई ने छात्रों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और अफवाहों से बचने की अपील की है। तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागीर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजा ने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त सुबह के 5:05 हुए हैं और वक्त है कार्यक्रम आराधना की। इस कार्यक्रम में हम करते हैं ईश्वर को याद, क्योंकि आज दिन है सोमवार, भोले बाबा का दिन है, देवों के देव महादेव शिव जी का दिन है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दिन की उनकी ही इस खूबसूरत सी भजन से।